सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी इंदौर है, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

उठो जवानों, नया सवेरा आया है। भारत माँ ने फिर हमें बुलाया है। तिरंगे की शान सदा बढ़ाएंगे, देश के लिए हर कदम उठाएंगे। वीरों की गाथा हम गाएंगे, मातृभूमि का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद का नारा जग में गुंजाएंगे।

न रूप तेरा न कोई आकार, फिर भी तू है सबका आधार। कण कण में तेरा ही वास है, तेरे बिना कहाँ प्रकाश है। मन की आंखें जब खुल जाती हैं, तेरी झलक तब मिल जाती है। हे निराकार, तुझको प्रणाम है।

न मंदिर में न मस्जिद में, तू बसता है हर एक हृदय में। तेरा नाम ही सच्चा सहारा, तू ही जीवन का उजियारा। जब जब मन तुझको पुकारे, दुख के बादल दूर उतारे। हे प्रभु, तू ही मेरा किनारा।

अदृश्य होकर भी साथ निभाता, भटके राही को राह दिखाता, तेरी महिमा अपरंपार है, तू ही सच्चा पालनहार है। शब्दों से तेरा वर्णन क्या हो, तेरी कृपा से जीवन क्या हो, हे निर्गुण प्रभु, तेरा सत्कार है, तेरा सत्कार है।

शांत पवन में तेरा संदेश, हर धड़कन में तेरा प्रवेश। तू ही आरंभ, तू ही अंत, तू ही जीवन का परम संत। तेरे नाम से मन खिल जाता, अंधियारा भी दूर हो जाता। हे प्रभु, तुझ में ही मेरा चित्त।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र। और इस कार्यक्रम में आप भी हमें मेल कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपने दिल की बात, हमारे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, प्रशंसा लिख सकते हैं, और इसके लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapkapatraindore@gmail.com। आपका पत्र की स्पेलिंग लिखिए aapkapatraindore@gmail.com। तो जल्दी जल्दी हमें मेल कीजिए ताकि आपका पत्र कार्यक्रम में शामिल हो सके, आपके पत्र। और आइए बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं आज का चिंतन। आलेख है किंशुक चौहान का, वाचिक स्वर है मुकाम सिंह चौहान के।
1: आस्था एक ऐसा गहरा और पवित्र भाव है जो मनुष्य के जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करता है। यह केवल किसी अदृश्य शक्ति या ईश्वर पर विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खुद पर, अपने सपनों पर और मानवता पर अडिग विश्वास का नाम भी है। आस्था वह प्रकाश है जो घने अंधकार में भी हमें सही रास्ता दिखाती है। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है और तर्क साथ छोड़ देते हैं, तब आस्था ही हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है। आस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति को असंभव में भी संभव देखने की दृष्टि देती है। एक बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो उसे यह आशा होती है कि वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही एक विद्यार्थी को अपनी मेहनत पर और एक बीमार व्यक्ति को अपनी सेहत में सुधार पर जो भरोसा होता है, वही उसकी असली ताकत बनती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आस्था मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे तनाव कम होता है और जीवन के प्रति उत्साह बना रहता है। दुनिया के सभी धर्म और संस्कृतियां आस्था की नींव पर टिकी है। यह हमें नैतिक मूल्यों से जोड़ती है और समाज में भाईचारे तथा प्रेम का संचार करती है। आस्था मनुष्य को अहंकारी होने से बचाती है और उसे यह एहसास कराती है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है। बिना आस्था के जीवन उस पतवार विहीन नाव की तरह है जो लहरों के थपेड़ों से कहीं भी भटक सकती है। आस्था कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। यदि मनुष्य के पास अटूट विश्वास हो तो वह पर्वत को भी हिलाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर और उस परमात्मा पर अटूट आस्था रखना अनिवार्य है। किसी ने क्या खूब कहा है, राह में अंधेरा हो तो क्या, मन में दीपक जलाए रखना, मंजिल दूर ही सही, कदम आस्था के बढ़ाए रखना। तूफान आएंगे बहुत तुझे डिगाने के लिए, तू बस विश्वास की पतवार को कसकर थामे रखना। आस्था पर कुछ महान लोगों द्वारा कहे गए प्रेरक सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवता और आस्था में विश्वास न खोएं। आस्था एक महासागर है, यदि इसकी कुछ बूंदें गंदी भी हो तो पूरा महासागर गंदा नहीं हो सकता। महारानी विक्टोरिया ने कहा, आस्था का अर्थ बिना प्रमाण के मानना नहीं, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा करना है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, खुद पर विश्वास रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो, जब चारों ओर असफलता का अंधेरा हो, तब जो शक्ति हमें टूटने से बचाती है और सब ठीक हो जाएगा का भरोसा देती है, वही आस्था है। यह तर्क से परे है, जहां विज्ञान का तर्क खत्म होता है वहां आस्था का सफर शुरू होता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में आस्था हमारे मन के लिए एक एंकर की तरह काम करती है जो हमें भटकने नहीं देती। जिस व्यक्ति को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर आस्था होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आस्था हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा है और हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा। अंत में बस इतना ही कि आस्था कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें झुकना नहीं सिखाती बल्कि अडीक रहना सिखाती है। यदि आपके पास आस्था है तो आप पहाड़ों को भी हिलाने का हौसला रखते हैं। तो आइए हम अपने भीतर उस विश्वास की ज्योति जलाएं जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा दे।
0: अभी सुना आपने आज का चिंतन, आलेख था किंशुक चौहान का और वाचक स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आइए आज जानते हैं सोयाबीन बीज किस्मों का चुनाव कैसे करें। वाचक स्वर है मनीषा शर्मा की।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में सकला किसान भाई बहनों को फिर से स्वागत है। भाई बहनों, अब बखत आई है कि अपन सोयाबीन के बोवनी की पूरी तैयारी करना। तैयारी करने के लिए अपने सबसे जरूरी काम है कि अपन ऐसी किस्म को चयन करा जो अपने अच्छी पैदावार दे और अपना लिए उपयुक्त रहे। अपना मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, इन्हीं जगह पे सोयाबीन की वैरायटी चुनने के लिए अपने जलवायु और मिट्टी का आधार पे अपनी किस्म को चुनाव करना चाहिए।

0: साथ ही साथ बुआई के लिए कम अवधि में पकने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली और अधिक उपज देने वाली प्रमाणित किस्मों के अपने प्राथमिकता देनी चाहिए। अपना मालवा क्षेत्र के लिए कौन कौन सी किस्म होन है जो उपयुक्त है यो भी अपन जान ला। JS 2034 यह किस्म लगभग 90 से 95 दिन में पकी के तैयार हो जाए। इकी फली होन जोरे वी चटके है नहीं और रोग का प्रति अच्छी सहनशीलता यह किस्म रखे हैं। इका साथ JS 2172 यह किस्म विशेष रूप से अधिक पैदावार देने के लिए जानी जावे है। अने या पकने में 95 से 100 दिन को समय ले है। इका साथ JS 2303 यह भी एक लोकप्रिय किस्म है जो 95 दिन में तैयार हुई जावे और किसान होन के अच्छी उपज भी दे है। लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर तक की उपज इन्हीं किस्म से मिली जावे किसान भाई के। इका सातेज NRC 142 यह जो किस्म है यह कम समय में पकने वाली उन्नत किस्म है और अपना मालवा में बदलता मौसम में स्थिर पैदावार भी दी दे। चुनाव करते समय अपने कुछ बातों को और ध्यान रखना चाहिए। फसल की जो पकने की अवधि है उसको भी ध्यान रखा। 90 से 100 दिन में पकने वाली जो किस्म होन है वी अपना लिए सबसे उपयुक्त रहे, क्योंकि रबी की फसल की बुआई के लिए अपनो खेत जो है उस समय पे खाली हो जाएगो और अपन अच्छी तैयारी कर सकता है। बीज की गुणवत्ता पे भी अपन ध्यान दा। केवल प्रमाणित या बीज निगम से जब अपन बीज खरीदा जिनकी अंकुरण क्षमता 85% से अधिक हो यो भी अपन ध्यान रखा। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म होन पे भी विशेष ध्यान दा। ऐसी किस्म होन को चुनाव करा जो पीला मोजाक, वायरस और फफूंद जनित रोग उनसे लड़ने में अच्छी रहे और अच्छी उपज अपने दे। और कुछ बातों अपन और ध्यान रखा कि अपन जब भी बुवाई करा तो बुवाई से पहला बीज होन के फफूंद नाशक और कीटनाशक से उपचारित जरूर करा, क्योंकि उपचारित बीज से अच्छी उपज अपने मिलेगी और अपना जो फसल है वह भी रोग से दूर रहेगी। और अपने यो भी मालूम है कि अपना मालवा की काली मिट्टी में जल भराव की समस्या होवे, इसके लिए हमेशा रीस फरो या ब्रांड बेड फरो तकनीक से बुआई करा, इका से अपने अच्छी उपज मिलेगा। सही किस्म और सटीक चयन और उन्नत तकनीकों से अपन अपने सोयाबीन के अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है। अना आपने फिर भी कोई समस्या हो तो सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की सलाह जरूर ला। भाई बहनों अच्छी तरह से अच्छी सूझबूझ से अपन खेती करांगा तो निश्चित तौर पे अधिक लाभ पावांगा। भाई बहनों आज की बात बस इतरीच। मनीषा शर्मा के दोविदा, राम राम।
1: अभी आपने सुनी खेती की बातें जिसमें मनीषा शर्मा से आपने जाना सोयाबीन बीज किस्मों का चुनाव कैसे करें। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग रंजन जोगलेकर के गायन स्वर में।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्ध

इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग रंजन जोगलेकर के गायन स्वर में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र। इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है apkaapkapatraindor यानी PATRAINDORE@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर सुन लीजिए, apkapatraindor@gmail.com। आपका पत्र इंदौर की स्पेलिंग है apkapatraindore@gmail.com। हमें आपके मेल्स का इंतजार रहेगा, तो जल्दी से अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए ताकि हम इन्हें शामिल कर पाएं आपका पत्र कार्यक्रम में आज सुबह 7:20 से। और लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:20 पर सुबह आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र, जो आधारित होगा आपकी प्रतिक्रियाओं पर। साथ ही फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:00 से। सुबह 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में स्वाति नाटेकर की गायी कुछ गजलें आपको सुनवाई जाएंगी। और सुबह 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेंगे आप पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन, राग होगा शिवमत भैरव। जिले की चिट्ठी का समय होगा सुबह 10:00। और सुबह 10:05 से सुनना ना भूलिएगा आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। उसके तुरंत बाद एक और फोन इन कार्यक्रम सुनिए आप, फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:00 से। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप दोपहर की सभा में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर की सभा में लोक संगीत सुनेंगे आप 1:30 से, सुगम संगीत 1:45 से, फिल्म संगीत दोपहर 2:00 और चित्रपट संगीत दोपहर 2:30 से। शाम 5:00 लेकर आएंगे हम युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। शाम 6:30 सुगम संगीत में सुनिए स्वाति नाटेकर की गाई कुछ गजलें। लोक संगीत के कार्यक्रम में नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए कुछ और मालवी लोकगीत लेकर आएंगे हम शाम की सभा में 6:45 से। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज सुने लघु एवं कुटीर उद्योग श्रीमती उषा खेड़े से भेंट वार्ता और साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम रात 8:00। चित्रगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 9:15 यानी 9:15 पर। चर्चा का विषय है आप सुनेंगे रात 9:30 और रात 10:00 सुनिएगा रूपक हे अवंती के, हे अवंती के लेखक है हरीश प्रधान, प्रस्तुति रविंद्र राले की। और रात 10:30 सुनिएगा शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज का गायन, राग होगा मारवा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 11 जून यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है रक्तदान महादान फायदे और भ्रांतियां। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता त्रिपाठी सहायक प्राध्यापक MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 यानी कि कल आप इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे। समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का STD कोड जरूर लगाइएगा जो कि है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले कल गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को। समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर यानी FM 101.6 MHz पर। साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं आपको

बता दें अब से कुछ ही देर में नहीं, सुबह 7:20 से आप सुनेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा कार्यक्रम आपका पत्र। इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे जीमेल पर मेल करके, और हमारा जीमेल आईडी है APKA@PATRAINDORE यानी आपका पत्र इंदौर @gmail.com। तो जल्दी जल्दी मेल कीजिए, हमसे जुड़िए, अपनी प्रतिक्रिया और प्रेम हम तक पहुंचाइए और सुनिए कार्यक्रम आपका पत्र सुबह 7:20 से।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है। अरे शादी में चलना है ना?
1: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे अपने भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया, अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा कर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, यह एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफार्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने

0: हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। सभी मैच दम्बुल्ला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आपका खत हमारे लिए किताबी जिंदगी है। हर पन्ना खोलूं तो एक नया किस्सा मिल जाता है। आपकी प्रतिक्रियाओं और प्रेम से सजे खतों के कार्यक्रम आपका पत्र में मेरा यानी तृप्ति लटपटे
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार तृप्ति जी, आज तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसे देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रमुख नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख केंद्र और राज्य दोनों में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल सही कहा, और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से
1: बिल्कुल,
0: भी एक
1: बिल्कुल
0: है।
1: आपने सही कहा। और हम आपको एक बात का और याद दिला दें
0: जी,
1: अपने श्रोताओं को, कि आज जो है सबसे बड़ी बात जो है, आज इतिहास में 10 जून का जो है भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। जब भारत ने 1986 में कपिल देव की कप्तानी में इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा था। और इसके अलावा आज 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस के दौरान स्वाद का लोग जश्न मनाते हैं। हमारे श्रोतागण भी मना रहे होंगे, ताकि खाना पकाने में ताजी और सूखी जड़ी बूटियों और मसाले के उपयोग से मिलने वाली विविधता और गुणवत्ता को पहचान मिल सके।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिलहाल जो है, हम अपने विविध रंगी श्रोताओं के क्या टेस्ट के बाद क्या विचार जो उत्पन्न होते हैं, उस विचार का हमें प्रतीक्षा रहेगा
0: जी।
1: और हमारे पास ढेर सारे पत्र भी आए हैं, मेल भी आए हैं
0: जी।
1: और जो छूट गए हैं, जो नहीं लिख पाए, वे हमारा व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर व्हाट्सएप करें। ये लाइव पत्रोत्तर के दौरान जो है
0: जी, और साथ ही मेल कर सकते हैं आपका पत्र indore@gmail.com पर, और शामिल कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे आज के आपका पत्र कार्यक्रम में। और जैसे आप रंगों की बात कर रहे थे राजेश
1: जी,
0: बहुत रंग बिरंगे खूबसूरत खत भी हम तक पहुंच चुके हैं।
1: एक इनका है,
0: ये पहला खत मैं पढ़ रही हूँ, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी जी का, जो लिखते हैं, अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो परीक्षाएं हुई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, तो इनका कहना है कि जो बच्चे फेल हो गए, अपनी सोच बदल लो, जीने का अंदाज निकालो, मुश्किल कामों को करके घबराने का क्या फ़ायदा, मुश्किल कामों को करने का साहस निकालो। साथ ही इन्होंने कहा है कि आजकल स्कूली छात्र और अभिभावक जो है वो अक्सर अच्छे अंकों और सफलता जो है अच्छे अंकों को ही सफलता मानते हैं, उसी को केंद्र बिंदु बना देते हैं, लेकिन इससे छात्रों की रचनात्मकता, व्यक्तिगत क्षमताएं सब दब जा रही है। तो हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। परीक्षा के दौरान घर परिवार में सामान्य वातावरण बनाना प्राथमिक जरूरत है। बच्चों को फेल होने का भय नहीं पैदा होने देना चाहिए और उनसे सामान्य दिनों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। साथ ही बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर इन्हें गले लगाने की जरूरत है। मानसिक रूप से इन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है, ताकि कोई दबाव उन पे ना हो।
1: और खास करके माता पिता का इसमें विशेष महत्व होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: परीक्षा के नाम पर बच्चों में डर पैदा नहीं करें। परीक्षा का हिंदी में जो अर्थ है, किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल क्षमता या योग्यता की ही जांच या मूल्यांकन करना है
0: जी। जी।
1: और किसी कार्य या ज्ञान की परख करना, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। परीक्षा के नाम पर हम बच्चों में डर उत्पन्न नहीं करें, क्योंकि एक तनाव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज सबसे ज्यादा नंबर लाना है, ये लाना है, तो इसके कारण कभी कभी बच्चे जो होते हैं
0: वो दबाव में
1: आ जाते हैं और अच्छा करने के बजाय जो है उनका जो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस पर हम माता पिता से विशेष निवेदन करेंगे।
0: पास होना या अंक ज्यादा लाना जीवन की सफलता नहीं दर्शाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा तृप्ति
0: जी।
1: और आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे हेलो फरमाइश के बारे में उन्होंने लिखा है। हेलो फरमाइश में उन बच्चों के लिए उन विचारों में अपनी बात रखी थी, अगर आपने सुनी तो अमल कर उन छात्रों की हौसला अफजाई करें। इनका कहना है दूसरे श्रोताओं से, अधिक अंक होना भी अच्छा है, मगर फेल होना भी बुरा नहीं है। अगली बार जरूर सफलता की तैयारी करें। अभिभावक, शिक्षक और समाज को मिलकर बच्चों को प्यार प्रोत्साहित करना चाहिए और सुरक्षित माहौल देना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ शिकायत भी है इनकी, कुछ मीठी
0: जी। बिल्कुल, इनकी शिकायत है, चॉइस टाइम कार्यक्रम इन्होंने सुना और उस कार्यक्रम में एक भूल हुई थी जिसे सुधारा गया था, मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम का गीत सुनना था, पर नागिन फिल्म का गीत सुनाया गया और बाद में इसे सुधार कर दिया गया। तो बाद में गलती आपने स्वीकार की, उन्हें बहुत अच्छा लगा और इस फिल्म का जो है नागिन फिल्म का गीत जो है वो सुनवाया गया बाद में।
1: देखिए कभी कभी मशीन को जो हम ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है भूल सुधार करते हुए, और इसमें हमारे श्रोतागण भी मार्गदर्शक मंडल में प्रमुख उनकी भूमिका है। और इस तरह से हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हम एक अच्छी चीज जो है एक सही चीज श्रोताओं तक पहुंचाएं।
0: और ये मंच तो राजेश जी है ही कि बिल्कुल, हम बिल्कुल, अपनी गलतियां प्रतिक्रियाएं अच्छी और बुरी सभी बातें जो
1: है जीवन में लोग भूलते हैं, गलती करते हैं, सुधारते हैं, तो जो गलती करते हैं वहीं तो सुधारेंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: हमारे पास भैरूलाल बाख्तरिया धाकर जी का उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से एक व्हाट्सएप संदेश आया है। इन्होंने लिखे हैं कि आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, रविवार को विविध भारती इंदौर से हमारे मेहमान कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर जी से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी की जो बातचीत की गई काफ़ी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद हम माला सिंह ठाकुर जी को पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने लिखा है,

0: जो ये दायित्व निभाए हैं सेवा के लिए, इन्हें भी उनका दायित्व जो है बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमें खत लिखने वाले सभी को। और अगर आप अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 3993290063। आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ भेज सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं आपका पत्र indore@gmail.com।
0: सभी छोटा अक्षर से है
1: जी, एक जी बिल्कुल
0: शब्द करके पढ़े।
1: आप मेल लिख सकते हैं APKAPATRAINDORE@gmail.com। आपका पत्र
0: जो है हमारे खुला हुआ
1: है, हमारे पास स्टूडियो में स्क्रीन खुला है, हम लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं और लाइव आपके पत्र शामिल कर रहे हैं। अगला खत जो है वो ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आया है राजेश जी। लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, पूर्णिमा पटेल, दिव्यांश, साक्षी, ऋतुराज और सूरज कुमार ढाकसे।
0: क्या लिखते हैं?
1: इनका कहना है, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 4 जून 2026 को महिला सभा कार्यक्रम बहुत पसंद आया ने। इस कार्यक्रम में स्वाधर ग्रह स्कीम योजना पर जानकारी दी गई, साथ ही आधुनिक भारत में डिजिटल नारी विषय पर वार्ताकार प्रीति दुबे जी की वार्ता इन्हें बहुत पसंद आई। प्रेजेंटर दुर्गेश नंदनी चौधरी जी को हार्दिक बधाई दी इन्होंने।
0: आपकी बधाइयां उन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वर्तमान जो समय है डिजिटल क्रांति का है और सब्जी वाले भी हैं, जो अगर हम समाज के बिल्कुल हम अगर कहें कि जो कम पढ़े लोग हैं वो भी डिजिटल क्रांति में अपना कदम बढ़ा दिए हैं और बिल्कुल मार्केट जाते हैं तो सब्जी भी लेते हैं तो फट से
1: जो भारत जो है ऑनलाइन डिजिटल भारत होता जा रहा है। साथ
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक प्रगति की निशानी है। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया, हनुमान सिंधे ऋषिकेश सिंधे ग्राम सिरटे जिला सांगली महाराष्ट्र से आया है
1: जी।
0: ये लिखते हैं, 8 जून को प्रसारित किया गया गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। प्रीति जोशी जी को इन्होंने धन्यवाद दिया है और आगे लिखा है, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ इस बारे में अच्छी बातचीत हुई और पर्यावरण के प्रति सजग रहें, पेड़ लगाएं, कई फायदे हैं। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, लिखा है कि सभी लोग पर्यावरण संतुलन में ध्यान दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अभी बारिश का समय आ रहा है
1: जी, बिल्कुल यही समय है पर्यावरण में और नए पौधे उगा के पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाने का। आप जो पर्यावरण दिवस की बात कर रहे थे तो हमारे आखिरी खत जो था दुर्गेश नागनपुरे जी का, उन्होंने भी लिखा था कि 5 जून 2026 का जो कार्यक्रम था महिला सभा उसमें विश्व पर्यावरण दिवस की बात जो की गई, जानकारी दी गई, साथ ही तृप्ति मिश्रा की प्रस्तुत की गई जो काव्य पाठ था वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। तो उन्होंने प्रेजेंटर दीप लक्ष्मी त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दिया।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे पास प्रवीण श्रीमाली जी ने एक छोटा सा व्हाट्सएप भेजा है, एक वीडियो भेजा है और बिल्कुल नर्मदा नदी में नाव पर बैठे हुए हैं और मैं सुना रहा

0: तो ये देखिए,
1: क्या
0: ये
1: बात है, क्या मनमोहक दृश्य था,
0: मनमोहक दृश्य भेजा है।
1: जी
0: और वास्तव में नर्मदा का पानी जो है बहुत स्वच्छ है।
1: जी
0: माँ नर्मदा भारत की जो है सबसे ये पवित्र नदी है
1: जी और जीवनदायिनी
0: और
1: है कई राज
0: प्राचीन नदियों में गिना जाता है।
1: जी
0: पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से ही मिल जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: और माँ नर्मदे की महिमा का क्या कहना, शिव पुत्री के रूप में दर्शन मात्र से मोक्ष, हर कंकर संकर और चीर कुमारी और वैराग्य। इसकी बात करें तो गंगा ज्ञान जमुना भक्ति और नर्मदा वैराग्य की अधिष्ठात्री है। तो और नर्मदा परिक्रमा का तो बहुत ही जो है हिंदू धर्म में पुण्यदायी
1: बिल्कुल
0: कार्य माना जाता है। इसे पैदल गाड़ियों या साइकिल से किया जाता है। इसमें भक्त जो है नदी के एक छोर से चलकर उद्गम स्थल अमरकंटक तक जाते हैं और दूसरे छोर से वापस लौटते हैं। तो ये हम

0: हमारी नर्मदा माँ की महिमा है, और सवेरे सवेरे प्रवीण श्रीमाली जी जो है हमें दर्शन करवा दिए।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रवीण श्रीमाली जी का मेल भी हमें मिला है और उन्होंने कहा है 4 जून को साहित्यिकी के अंतर्गत अरविंद शर्मा का काव्य पाठ और गजलें उन्हें पसंद आई, 5 जून को कंपेयर्ड फिल्म संगीत के अंतर्गत पर्यावरण दिवस पर प्रकृति से संबंधित गीतों को सुनवाया गया, लाजवाब पेशकश के लिए पद्मश्री जी को धन्यवाद दिया है, 7 जून को वसुंधरा के अंतर्गत जल संकट को लेकर प्रतिमासिक की विस्तृत चर्चा रोचक लगी, इसी दिन विविध भारती सेवा पर हमारे मेहमान क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माल सिंह से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी की चर्चाओं ने पसंद आई, 8 जून को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत शिक्षित बेटी समर्थ समाज बहुत ही अच्छे विषय को लेकर एक कार्यक्रम उन्हें पसंद आया, वाकई में आज बेटियां भी बेटों से पीछे नहीं, सभी को इन्होंने धन्यवाद दिया है और बहुत बहुत प्रशंसा की है, साथ ही आपके केंद्र से प्रसारित मनभावन चॉइस टाइम दिल ने फिर याद किया और कंपेयर्ड फिल्म संगीत इंदौर परिक्रमा आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी इन्हें बहुत पसंद आई और हार्दिक साधुवाद दिया है।
0: जी और आगे क्या लिखते हैं,
1: ये तो इन्होंने लिखा ही है, साथ ही जब आप नर्मदा की बात कर रहे थे तो राजेश जी मुझे याद आ गई ये किताब जो अमृतलाल वेगड़ की है नर्मदा की परिक्रमा, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो अमरकंटक से शुरू हो के नर्मदा की पूरी परिक्रमा को बहुत खूबसूरत तरीके से उस किताब में जो है वहाँ पर सुनाया गया है, मतलब जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो पूरा दृश्य जो है वो आपकी आँखों के सामने आ जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए जो बेटी हैं काफ़ी बेटी है भविष्य है
1: जी,
0: और हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, जब जब जन्म लेती है बेटी खुशियां साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात ही बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी,
1: क्या बात है,
0: तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी, त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, जिस घर जाएं उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी, बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी।
1: जी बहुत
0: तो देखिए ये जो हमारे विभिन्न कवियों ने
1: जी
0: इन बेटियों के बारे में जो लिखा है वास्तव में अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और आज तो बेटियां जो है वो हम सिर्फ घर तक नहीं सीमित रह गई हैं, स्पेस तक पहुंच चुकी हैं बेटियां,
0: बिल्कुल,
1: और हर क्षेत्र में जो है वो अपने
0: आगे
1: हैं।
0: प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से लिख रहे हैं आनंद जोशी और तनुजा जोशी जी, अपना पत्र जो है व्हाट्सएप के माध्यम तक उन्होंने पहुँचाया है, इन्होंने लिखा है 8 जून 2026 को केंद्र महानिदेशालय रंग भवन में नई दिल्ली में आदरणीय संजीव मालवीय जी की पुस्तक एनाउंसर्स डायरी का विमोचन हुआ। आकाशवाणी इंदौर परिवार को इन्होंने बहुत बहुत बधाइयां दिया है। वास्तव में मालवीय जी जो है दिल्ली गए हुए हैं और एनाउंसर्स डायरी का जो 90 वर्ष जो पूर्ण हुआ है इस पर विमोचन हुआ और अमूल्य है ये।
1: बिल्कुल,
0: अब आज आने वाले हैं कार्यालय, आज आएंगे और उनके साथ हम शेयर करेंगे
1: उनके अनुभव जो है वो
0: और आप तक पहुंचाएंगे। और आगे लिखा है गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में प्रीति जोशी जी ने जो शिक्षित बेटी सशक्त समाज की थीम पर पूर्व कलेक्टर श्रीमती चंद्रकांता जी शर्मा, श्री विजय आर चौबे सेवानिवृत्त प्रोफेसर और श्रीमती रश्मि शर्मा जी शिक्षक के विचार पर वर्तमान पीढ़ी के लिए जो चर्चा की गई वास्तव में आज के समय में प्रासंगिक लगे।
1: बिल्कुल, और सराहनीय भी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अगला खत जो हमें मिला है वो ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा का, और साथ ही रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का है। इनका कहना है कि हमें दिनांक 5 जून 2026 को कार्यक्रम MH हॉटलाइन बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ की गई बातचीत और गाने हमें बहुत पसंद आए। प्रेजेंटर पद्मश्री तपस्वी को हार्दिक बधाई दी है।
0: आपकी बधाइयां हैं उन तक
1: प्रेषित की जाएगी।
0: और हमारे पास मंडलेश्वर से लिख रहे हैं अविनाश कुमार वारचे जी, ये व्हाट्सएप के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने लिखे हैं कि आज भी हमारे घर में सुबह रेडियो बजने वाली जो वायलिन की धुन और वंदे मातरम से जो होती है और बिस्मिल्ला खान जी की जो सहनाई से जो शुरुआत होती है, वास्तव में मेरे 96 वर्षीय पिताजी सुबह सुबह रेडियो ऑन कर देते हैं।
1: बहुत बढ़िया,
0: बहुत बड़ी बात है 96 वर्ष की अवस्था में रेडियो ऑन करना, ये अपने आप में महत्व है और पुरानी जो संस्कृति है उसको हम संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं और वो सीख दे रहे हैं वर्तमान बच्चों को कि अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी जो संस्कृति है उसको
1: अपनी जड़ों से जुड़े
0: संवर्धन करना आवश्यक है। और आगे लिखते हैं, भारतवर्ष में भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत से चलता है और इस समय विक्रम संवत 2083 चल रहा है, जिसकी तिथियां 15-15 दिन में बदलती है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहलाती है। इस वक्त ज्येष्ठ माह चल रहा है और उसमें भी अधिक माह चल रहा है, परंतु उद्घोषक शक संवत बताते हैं और तिथि भी 28-29-30 बताते हैं, जो असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। तो हमारे यहाँ जो प्रसारण की जो है, जो संवत चलती है, अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जो नीति है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शक संवत और विक्रम संवत दोनों जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो आप तो समझ ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए
1: जी।
0: और अगला
1: खत हमें मिला है तहसील पेटलावत जिला झाबुआ से दिनेश परमार, निर्मला परमार का। इनका कहना है, हम आपके नियमित श्रोता है, 20 सालों से आकाशवाणी इंदौर को सुन रहे हैं। हेलो डॉक्टर, युवाणी, गुड मॉर्निंग इंदौर आदि कार्यक्रम इनके मन को खूब भाते हैं। सभी कार्यक्रम प्रसारकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: राजेश जी। जैसे कि अभी आप कह भी रहे थे कि 96 ईयर्स तक भी अभी तक सुन रहे हैं। बहुत सारे घरों में मैंने सुना है कि जो घर सुबह की बात है वो आकाशवाणी की धुन के साथ ही होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहा आपने तृप्ति जी। और देखिए, सतीश वाजपेयी जी व्हाट्सएप किए हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं यह जानना चाहता हूं, आकाशवाणी इंदौर जो सिर्फ मोबाइल के ऊपर या मीडियम वेव पर ही चलता है, क्या एफएम इंदौर नहीं किया जा सकता, जो स्थानीय तौर पर रेडियो के ऊपर भी सुना जा सके। वाजपेयी जी, हम आपको बता दें कि हमारा आकाशवाणी इंदौर में दो चैनल है। पहला जो चैनल है मीडियम वेव प्राइमरी चैनल है, ये मीडियम वेव पर चलता है। ये जो है 200 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगा हुआ है और मध्य प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन था। और दूसरा जो विविध भारती है, ये एफएम पर चलता है। और वर्तमान समय में न्यूज ऑन एयर ऐप, जब डिजिटल क्रांति रेडियो ने अपना स्वरूप बदला, तो न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमारे दोनों चैनल, विविध भारती और प्राइमरी चैनल, दोनों पूरे विश्व में कहीं भी आप सुन सकते हैं
1: जी।
0: तो ये बहुत बड़ी
1: बात है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
1: मेल हमें जो मिला है वो मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह का। इनका कहना है कि 7 जून को विविध भारती सेवा से हमारे मेहमान में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माल सिंह से जो बातचीत की गई, इन्हें बहुत रोचक लगी। इसी प्रकार 8 तारीख को प्रातः 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत शिक्षित बेटी और समर्थ समाज की जो वार्ता थी वो काफी रोचक थी। और सबसे बड़ी बात है राजेश जी कि इनका कहना है कि हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं है, यदि इन कार्यक्रम को ईमेल या व्हाट्सएप ऐप पर आधारित किया जाए तो काफी अच्छा लगेगा। ये बात कर रहे हैं मन भावन चॉइस टाइम कार्यक्रम की। एक्चुअली मन भावन और चॉइस टाइम कार्यक्रम में हम खतों को पढ़ते हैं और इनका कहना है कि ये पोस्ट कार्ड नहीं लिख सकते वहां से।
0: आपका विचार हमने नोट कर लिया है
1: जी। बिल्कुल,
0: हम कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिश पूरा करें।
1: एक समय पर हम लोगों ने मनभावन एसएमएस पर भी आधारित की शुरू किया बिल्कुल। था
0: और चौकड़ा धाम कॉलोनी सनाबस से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान, ये लिखते हैं 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस पर केंद्रित जो कार्यक्रम काफी अच्छा लगा। संतुलन ही सुख है, हवा पानी और मिट्टी को शुद्ध रखना किसी पूजा से कम नहीं है। क्या बात है, आज का जो परिक्रमा जो है, परिक्रमा जो प्रसारित किया गया काफी अच्छा लगा और पर्यावरण दिवस पर काफी अच्छी जानकारियां दी गई। स्वच्छता एवं वृक्षारोपण में इंदौर अग्रणी है।
1: बिल्कुल,
0: 5 जून पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई प्रोग्राम किए गए यहाँ पर।
1: और उसके एक काफी अच्छी प्रतिक्रिया है,
0: माँ के नाम भी अभियान चलाया गया
1: जी।
0: काफी अच्छा लगा। और 8 जून को जो है प्रीति जोशी जी का जो कार्यक्रम, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो ये कार्यक्रम जो किया गया काफी अच्छा लगा। और सदाबहार गीतों पर सुनहरे पल में अच्छे गीत को सुना, काफी दिल प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: अगला मेल
1: जिस कार्य

0: कार्यक्रम की आप बात कर रहे थे, गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम, जिसमें प्रीति जोशी जी ने बात की बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ, इसी के ऊपर एक प्रतिक्रिया हमें भेजिए। हनुमान शिंदे और ऋषिकेश शिंदे ग्राम शिरटे जिला सांगली से, उनका भी यही कहना है कि 8 जून को ये कार्यक्रम जो गुड मॉर्निंग इंदौर प्रसारित किया गया, इसमें प्रीति जोशी जी की प्रस्तुति उन्हें बहुत पसंद आई और कार्यक्रम का जो विषय था बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, इस बारे में जो भी बातचीत थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुमचंद कटारिया जी ये एक व्हाट्सएप किए हैं
0: जी।
1: इन्होंने लिखा है एक पेड़ माँ के नाम लगाना है और हम सबको मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाना है। हम सबको मिलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। वसुंधरा की महिमा अपरंपार है, हम जो बोते हैं सो गुना करके देती है। जैव विविधता को हमें सबको बचाना है, वसुंधरा की धरा पर सब जीव जंतु को बचाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आगे लिखते हैं, हम करवा बोते हैं करवा देती है, मीठा बोते हैं मीठा देती है, हम आम लगाते हैं तो आम देती है, अगर नीम लगाते हैं तो कड़वा देती है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आगे लिखते हैं, वसुंधरा में अनगिनत जीव जंतु है, उनका पालन पोषण करती है, हम सबका भार सहन करती है, बड़ी शालीनता के साथ रहती है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आओ ऐसी वसुंधरा को बार बार प्रणाम करते हैं, आओ सरकार की पहल के साथ एक कदम भी हम आगे बढ़ाते हैं, एक पेड़ में माँ के नाम लगाए हैं, हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां और समसामयिक है,
0: बिल्कुल
1: विश्व पर्यावरण दिवस हुआ और अभी बारिश आने वाली है, गड्ढे करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
0: अगला
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: अगला मेल हमें मिला है धर्मपुरी जिला धार से, शेख फईब मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी का, इनका भी कहना है दिनांक 5 जून को आकाशवाणी इंदौर की प्रातःकालीन बेला में प्रसारित प्रोग्राम सुनहरे पल सुना बहुत ही दिलकश और उम्दा लगा। प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी को विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ खूबसूरत नगमों के साथ अपनी प्रभावशाली और सशक्त पेशकश के जरिए पूरे प्रोग्राम को लाजवाब बना दिया। शानदार प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद और आभार दिया है।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की और आपका धन्यवाद हम उन तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लावरिया भैरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया जी, प्रमिला बामनिया जी, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार। लिखते हैं, आपका पत्र जो है प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आगे लिखते हैं, महोदय जी एक मेरा सुझाव है, FM विविध भारती से सप्ताह में 2 बार फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होता है, इसमें से एक दिन श्रोताओं द्वारा फोन पर की गई बातचीत और उनसे गीत को रिकॉर्ड करके इसे प्रसारित किया जाए
0: जी।
1: इन्होंने ऐसा लिखा है, तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो सके तो और अच्छा है, समय भी बचत होता है और इसमें श्रोताओं के साथ जो सीधी जो बातचीत होती है ये भी
0: सीधे जुड़ने
1: अच्छा
0: का जो अनुभव होता है वो ज्यादा खूबसूरत होता है। इनका मेल भी हमें मिला है
1: जी।
0: अनिल बामनिया जी का कहना है कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रशंसा महोदय, आपके केंद्रों से हमें प्राय अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 6 तारीख को इनका कहना है कि आपके केंद्र से हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम सुना और दिनांक 7 तारीख को हमारे मेहमान कार्यक्रम में ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी ने समाज सेवी जी से जो चर्चा की हमें बड़ी लाजवाब लगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं कि 2 जून 2026 को हेलो विविध भारती कार्यक्रम में जो तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह कार्यक्रम पूरा प्रसारित नहीं किया जा सका उससे काफी हमें निराशा हुई है। आपके केंद्र पर तकनीशियन है या नहीं? बिल्कुल तकनीशियन है, लेकिन कभी कभी मशीन भी रुष्ट हो जाती है
0: जी। सही कहा।
1: तो खैर, जब हमारा कभी कभी शरीर बीमार हो जाता है तो स्वाभाविक है कि कभी कभी मशीन रुष्ट होती है और तत्काल ठीक भी कर दिया जाता है और हर प्रकार के यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं
0: जी, बिल्कुल। और वो तकनीकी सहयोग से ही हमारे कार्यक्रम जो है वो श्रोताओं तक पहुंच पाते हैं,
1: क्योंकि आकाशवाणी में जो है तकनीकी विंग, कार्यक्रम विंग और प्रशासनिक विंग सभी विंग होते हैं
0: और सभी मिलकर
1: समन्वय के साथ कार्य करते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और तभी हम आपके साथ जो है बातचीत करने के लिए
0: और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आप तक पहुंच
1: पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: अगला खत जो है हमें, अगला मेल हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से।

0: शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े जी का उनका कहना है, दिनांक 7 और 8 को जो कार्यक्रम है चॉइस टाइम, वो मुकाम सिंह चौहान जी ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 121 खत शामिल करते हुए सभी का दिल जीत लिया। पूरा तन मन लगा के कार्यक्रम पेश करने के लिए दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथ ही कह रहे हैं, आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है, खासकर मन भावन, चॉइस टाइम और MH हॉटलाइन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कटारिया जी के अलावा पिंटू सेन जी, हरिनिवास खेरे जी, बाबूलाल चौधरी जी, मिश्रा गोल्डन, KP चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्ण बिराज, अर्नब काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया जी लिख रहे हैं कि जल संकट पर प्रतिमा सिंह जी की वार्ता काफ़ी अच्छी लगी और वर्तमान स्थिति को देखें तो अभी जल की कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है हम लोग जानते हैं, और इन समस्याओं का समाधान निकल गया तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे, जल संकट से उन्हें बचा पाएंगे। उनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी और कार्यक्रम की सराहना भी की है। हम श्रोताओं से भी निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में वर्षा जल का संचयन करें, खेत का पानी खेत में संरक्षित करें।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: बिल्कुल। और आगे इन्होंने लिखा है, प्रीति जोशी जी ने जो प्रस्तुत किया, जो बेटी पर केंद्रित जो कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला,
0: काफ़ी सारे श्रोताओं को बेटी पर प्रस्तुत ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा है राजेश जी
1: जी,
0: और भी कुछ श्रोताओं को मैं चाहूँगी कि वो हमसे जुड़े इस कार्यक्रम में। आप अगले सप्ताह भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9993290063 और हमारा मेल आईडी है आपका पत्र indoor@gmail.com।
1: जी, हमारे पास एक पत्र जो है पांडर कबड़ा से लिखने थे हैं, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुशीली बुरांडे और धनश्री बुरांडे जी, बल्ला रसा से सूरज जी लोढ़े, प्राची लोढ़े जी, एकलव्य लोढ़े जी लिखते हैं, आपकी जो पसंद कार्यक्रम, आपकी जो चॉइस टाइम है हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा और लिखे हैं हमें, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखे हैं TD मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा जी, प्रतीक मल्होत्रा जी, जय वीर सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, और कालका से लिखने वाले हैं शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा, सभी लोग लिखे हैं कि आपका जो कार्यक्रम आपकी पसंद है काफ़ी अच्छा लगता है और एक मनभावन कार्यक्रम जो है ये भी काफी अच्छा लगता है। हम लोग काफी सभी लोग मिलके
0: जितने फरमाइशी कार्यक्रम है काफी वो श्रोताओं को पसंद आते हैं। और जैसे आपने कहा अभी चंडीगढ़ से हमें खत मिला है, तो जब से ऐप पर आ गए हैं हम, तब तक देश की कोई सीमा देश विदेश नहीं रह गया,
1: बिल्कुल
0: हम सीमा से पार तक सुनाई दे रहे हैं।
1: और इसी संदर्भ में जो हमारे पास जो पोस्टकार्ड आया है, झुमरी तिलैया बिहार से आया है, छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले जी और महेंद्र चौरसिया जी, ये लिख रहे हैं कि आपके सभी कार्यक्रम हमें अच्छा लगता है। और जिला हिंगोली से लिख रहे हैं रमाबाई सुरेंद्र इंगोले जी और मंजूषा इंगोले जी, नामदेवराम सिंधे जी, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खास करके मनभावन कार्यक्रम और चॉइस टाइम की इन्होंने प्रशंसा किया है।
0: अगला जो मेल है वो हमें मिला है ग्राम सालियाखेड़ी जिला अगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा, मोनू, संगीता, माही विश्वकर्मा का। इनका कहना है, आपको सप्रेम नमस्कार। नमस्कार जी, हम आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता हैं और हमें आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित मन भावन कार्यक्रम और फोन इन कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। हम सुबह 6 से रात 11 बजे तक सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ज़्यादातर इंदौर आकाशवाणी को ही सुनते हैं। इसे सुनने के लिए हम सुबह जल्दी भी उठते हैं, कई सालों से 5 बजे उठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों को सराहा, सुना और हमें लिखा। तृप्ति जी नवग्रह नगरी तिलक पथ खरगोन से हमारे पास मनीष निमारे जी, शीतल निमारे जी, वंशिका निमारे जी पवार, सुभांगी, दिव्यांश, राजेश, रीता जी पवार हृदय से लिखते हुए लिख रहे हैं राजेश जी, और कोमल सुरीली तृप्ति जी को आपको बहुत अच्छी विशेषण लगा के लिखे हैं
0: जी।
1: नमस्कार उन्होंने किया है, तहे दिल से उन्होंने आपकी प्रशंसा की है और लिखे हैं कि अधिक माह में हमारी 76 वर्षीय माता जी नर्मदा स्नान करने की इच्छा

0: बताई और हमने सब कुछ काम पोस्टपोन्ड करके जो है माता जी और भांजी को मंडलेश्वर नर्मदा जी स्नान करवाकर पुण्य अर्जन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माता जी की सेवा जी। सबसे बड़ी सेवा है और हमारी माता जी हमारे साथ ही नहीं हम उनके साथ रहते हैं।
1: क्या बात बोली।
0: और इन्होंने ये भी लिखा है कि वीडियो फोटो सब भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में बुजुर्गों की जो सेवा है सबसे बड़ा धर्म है और करना चाहिए। आगे लिखते हैं एमएच हॉटलाइन में अन्य प्रदेश के श्रोताओं से लंबी चौड़ी जानकारियां मिल जाती है जबकि आसपास के श्रोताओं से निरस्ता से दो टिप ही लिखते हैं, ऐसा अनुचित है। तो हम निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं अपने अपने सुंदर विचार सुविचार से अवगत कराएं
1: और
0: अपने साथियों को भी उन्हें अपने अपने अच्छे विचारों से अवगत कराएं। आगे इन्होंने लिखा है मनभावन कार्यक्रम को हास्य पर प्रसारण की बजाय कुछ विराम देना चाहिए। इन्होंने लिखा है देखिए सभी को सभी प्रकार के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हमें तो सभी की जो इच्छा है उनकी पूर्ति करनी पड़ती है।
1: हम कोशिश करते हैं
0: कि सभी को लेके चलें।
1: जी बिल्कुल सही कहा।
0: और लिखे हैं कि कार्यक्रम की गरमा बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष निमारे जी, आप हमारे लिखा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनीष जी जो है हमारे नियमित श्रोता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। और हम अपने
0: यदुनंदन सोनी संतोष सोनी जी खरगोन से लिख रहे हैं
1: जी,
0: आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम हम 40 वर्षों से सुन रहे हैं। नंदा जी भैरा जी और युवानी कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए जाते हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और हमारे कई युवा दोस्त भी लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की। अगला
1: जी एक और हमें दुर्गेश नागनपुरे जी ने ही एक और मेल किया है। इनका कहना है कि 9 जून 2026 को महिला सभा कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया। इस कार्यक्रम में श्रृंखला मेरी उड़ान के अंतर्गत कथक नृत्यांगना दिया सिंह ठाकुर जी से की गई बातचीत इन्हें बहुत पसंद आई और प्रीति जोशी जी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा जी बोड़खे हनुमान बोड़खे जी उत्तम जामदारे जी ये लिखते हैं 7 और 8 तारीख को जो है चॉइस टाइम में मुकाम सिंह चौहान जी ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 121 खत शामिल किए। क्या बात है। और ये जो उपलब्धि है मुकाम सिंह चौहान जी तक पहुंचा रहे हैं, सभी का दिल जीत लिया और पूरा तन और मन लगा के कार्यक्रम पेश करने के लिए दिल से धन्यवाद उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद हैं और एमएच हॉटलाइन और मनभावन सभी की इन्होंने प्रशंसा किया है और गुड मॉर्निंग इंदौर भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और अगला
1: अगला जो खत है वो अगला मेल हमें मिला है सूरज कुमार ढाकसे जी का। इनका कहना है हमें दिनांक 8 जून को आकाशवाणी पर जो मराठी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया वो बहुत पसंद आया। इस कार्यक्रम में जागतिक महासागर दिन विषय पर परम पूज्य माताजी स्वामी स्थित प्रज्ञानंद सरस्वती जी से अमय नेमावरकर की जो बातचीत हुई वो बहुत अच्छी और रोचक थी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन जी भाटापारा से लिखे हैं आपका कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमें पूरे ग्रुप में ये कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोशी जी
1: ज़्यादातर जो है वो पसंदीदा कार्यक्रम इन्हें फरमाइशों के जो कार्यक्रम हैं वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं श्रोताओं को। और ऐसे ही आप अपनी प्रतिक्रियाएं प्रेम आप जो भी हमसे कहना चाहते हैं दिल की बात वो कह सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं आपका पत्र indoor@gmail.com पर या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9993290063 पर।
0: जतुका किशनपुर से लिखने वाले हैं आलम दिलकश जी सवाना नाथ जी रिजवान राहे जी इमरान राजा आलम शेख सवाना आलम चांदनी नाज और सिराजपुर गणेशपुर से लिख रहे हैं वकील राहे जी फिरोज आलम जी ये लिखते हैं मनभावन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मेरे पत्र को जो है बिल्कुल शामिल करें। तो आपका पत्र शामिल हो गया है और आगे इन्होंने लिखा है कि आपका जो कार्यक्रम खासकर

0: के जो ये फोन वाला कार्यक्रम होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आसिफ अली सिद्दकी जी और वाहिद अली सिद्दकी जी लिखे हैं राजस्थान से कि आपके ये जो कार्यक्रम जो हैं गुड मॉर्निंग इंदौर, ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे लिखने वाले हैं हमारे पास ये राजेश कुमार धंजे जी, राहुल कुमार धंजे जी, विशाल धंजे जी, शीला धंजे जी और गायत्री धंजे जी। और इसके अलावा खुर्दी रोड मानपुर से लिख रहे हैं विजय बैद्य, रानी बैद्य, महिमा बैद्य, नीतू बैद्य जी। इन्होंने आपकी पसंद जो कार्यक्रम है इसकी इन्होंने तारीफ किया है और लिखा है काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हैं। इसके अलावा दयाराम जाटव जी और चैन सिंह जी ये लिखते हैं कि आपका जो फिल्म संगीत के जो कार्यक्रम हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं और पर्यावरण पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। सागर नेपाल पैलेस से तिलक राणा जी और मीना राणा जी ये लिखते हैं कि पर्यावरण पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए ये काफ़ी अच्छे लगे। और घंटाघर चौक से संजय पंचोलिया जी, प्रियंका पंचोलिया जी, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया जी लिखते हैं पौधा लगाओ पर्यावरण को सुरक्षित रखो। 5 जून को प्रसारित जो कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर जो किया गया था ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा और भी अभी मेल आए हैं।
1: मेल तो आते रहेंगे पर हमारे कार्यक्रम का समय जो है बिल्कुल, वो घड़ी कह रही है कि जाने का समय,
0: घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को।
1: तो आप हमें खत लिखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए, हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सारी प्रतिक्रियाओं को हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमसे ऐसे ही जुड़ने के लिए, हमें सारी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई

0: 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने

0: को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
3: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During during Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure.

स्वदेश फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे, लिखा था जावेद अख्तर ने। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 4,399 दिनों के निर्बाध कार्यकाल के साथ ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2014

से यानी 12 वर्षों से अधिक समय से पद पर है। उन्होंने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद वे 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए और फिर 2024 में अपने तीसरे और वर्तमान कार्यकाल के लिए वापस लौटे हैं।

0: बी प्राक का गाया गाना सुन रहे थे आप फिल्म केसरी से। मनोज मुंतशिर ने इस गाने को लिखा था, संगीत आरको का था और आप इसे सुन रहे थे फिल्म संगीत में।
1: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
2: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
3: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
2: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
4: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में।
2: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
5: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
6: औरों को भी सिखाओ।
0: श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचित और सबसे लंबे कार्यकाल के बारे में। और जब कार्यकाल की बात चल रही है तो अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की, जिनमें से एक और प्रमुख थी ऊर्जा योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी देना। और इस योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2024 को, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय परिवारों को उनकी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके जरिए पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त हो रही है और 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए सिस्टम की लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के लिए अतिरिक्त लागत का 40% हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। अधिकतम सब्सिडी 78,000 तक की सीमित होती है। साथ ही पैनल से अतिरिक्त बिजली अगर पैदा होती है तो उपभोक्ता उसे ग्रिड को बेचकर साल भर में 15,000 से 18,000 तक कमा भी सकते हैं।

सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर से। इसे लिखा था गुलजार ने, ए आर रहमान का संगीत था और आप इसे सुन रहे थे फिल्म संगीत में। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 12 वर्ष के कार्यकाल में अंत्योदय की भावना के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाया। साथ ही 1 जुलाई 2015 को उन्होंने शुरू की डिजिटल इंडिया की पहल। इसका उद्देश्य था इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल शासन और वित्तीय समावेशन में व्यापक विस्तार के माध्यम से भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, जिसके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें की, जैसे दूरस्थ गांवों और शहरी केंद्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट और सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करना, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित करना, घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करके 5G नेटवर्क का विस्तार करके और AI जैसी भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना, इंडिया स्टैक ग्लोबल फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत की तकनीकी सफलता को दुनिया के साथ साझा करना, ऐसी ही कई सारे उनके उद्देश्य थे। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिजिटल क्रांति के लिए भी जाना जाता है।

ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज़ में आप सुन रहे थे गाना फिल्म लगान से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे में व्यापक परिवर्तन का नेतृत्व किया है, जिसमें स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और देश में वास्तविक उच्च गति रेल यानी कि हाई स्पीड रेल लाने के लिए अरबों डॉलर की बुलेट ट्रेन की परियोजना भी शुरू की है। इन दोनों परियोजना का उद्देश्य यात्रा के समय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है और साथ ही यात्राओं को और ज़्यादा सुलभ और ज़्यादा एडवांस बनाना है।

संजू फिल्म से सुना अभी आपने गाना सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत में हम बात कर रहे थे देश के सबसे अधिक समय यानी 4,399 दिनों तक निर्बाध कार्य करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में, और इसी के साथ फिल्म संगीत अब सम्पन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं और अब समय है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये पहली रचना।

नारायण लाल सिसोदिया और साथियों की आवाज में सुन रहे हैं आप आज लोक संगीत के मालवी लोकगीत। इन्हीं की आवाज में सुनवाते हैं आइए आपको एक और लोक रचना।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज में एक और पारंपरिक लोक रचना।

मालवी लोकगीत सुना अभी आपने नारायण लाल सिसोदिया और साथियों की आवाज़ में, इन्हीं के स्वर में आज आपको सुनवा रहे थे लोक संगीत के सभी लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वाति नटेकर की गाई कुछ गजलें। आइए शुरुआत करते हैं पहली गजल के साथ, जिसे लिखा है भवदीप जयपुरिया ने।

भवदीप जयपुरिया की लिखी ये गज़ल अभी सुन रहे थे आप स्वाति नटेकर की आवाज़ में सुगम संगीत के कार्यक्रम में। श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए, इस गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:32 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा रक्तदान महादान फायदे और भ्रांतियाँ। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता त्रिपाठी जो कि सहायक प्राध्यापक MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से हैं उनसे पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 यानी कि कल समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इसके पहले इंदौर का STD कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। तो फोन करना ना भूले कल दिनांक 11 जून 2026 को और कार्यक्रम सुने सुबह 10:32 से 11:02 पर तक विविध भारती इंदौर यानी FM 101.6 MHz साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर। सूचना समाप्त हुई और लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत की अगली गजल। भवदीय जयपुरिया की ही लिखी ये गजल है और सुन रहे हैं आप इसे स्वाति नटेकर की आवाज में।

भवदीप जयपुरिया की लिखी गज़ल अभी सुन रहे थे आप स्वाति नटेकर की आवाज़ में। और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम लाए हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन राग है शिवमत भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी सुन रहे थे आप पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। राग था शिवमत भैरव। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह।

नरसिंहपुर जिले में पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक, उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रुपए लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जलसंवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में आप सभी सुनने वालों को तृप्ति का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। आइए लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: अमीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया। और परिवार में सबका स्वास्थ्य कैसा है?
1: हाँ, परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा है
0: जी। आज हसीना जी ने फोन नहीं किया, वो कहाँ है?
1: वो गए ना ड्यूटी, गए ना दोनों बहन भाई, मोहम्मद रफी और वो।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी आप ही सुन रही है रेडियो और वो दोनों काम पर?
1: हाँ हाँ।
0: तो उनको रेडियो सुनने का मौका मिल पाता है कि नहीं फिर काम के दौरान?
1: दुकान पे चल रहे हैं ना मैडम, वो तो शाम को 7 बजे तक चलता है दुकान पर।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब वहाँ वो लोग सुनते हैं और यहाँ घर पे आप सुनती हैं?
1: जी मैडम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत नियमित होता है
1: मैडम।
0: जी जी,
1: आकाशवाणी के बहुत शौकीन है हम लोग
0: जी। और कब से सुन रही है वैसे आप?
1: मैडम मेरे फादर सुनते थे जब से मैं छोटी सी थी, हूँ संभाला मैंने।
0: अरे वाह,
1: जब से ही मैं तो सुन रही हूँ, फरमाइश सब बच्चे अब करते हैं।
0: जी
1: मतलब
0: जी,
1: फरमाइश करने को भी कम से कम 35 साल हो गए हैं मैडम
0: जी। तो
1: फरमाइश, फोन लगाना वगैरह।
0: हाँ, फोन लगाना, पत्र लिखने, लिखते लिखते भी आपको 35 साल हो चुके हैं?
1: हाँ मैडम
0: जी, क्या बात है। और आप नियमित रूप से लिखते हैं, मतलब कैसे होता है ये कि हर थोड़े दिन में आपके घर से आप जाकर पत्र लाते, पॉडकास्ट लाते हैं और फिर पोस्ट कार्ड को लिख के, और फिर कौन उसको पोस्ट करने जाता है?
1: पोस्ट कार्ड मैं भी कर देती हूँ, मेरा लड़का भी कर देता है, मैं भी पोस्ट कार्ड ले आती हूँ, मेरा लड़का भी ले आता है मैडम।
0: अच्छा।
1: मतलब लड़की को भी टाइम मिलता है कभी तो वो भी ले आते हैं, जैसे कभी कभी छुट्टी कर लेते हैं आर जी इतवार के,
0: जी
1: हम सब जने ले आते हैं पोस्ट कार्ड इकट्ठे ले आते हैं।
0: और फिर सब मिलके बैठ के पत्र लिखते हैं या फिर आपका शौक है?
1: पत्र मेरा लड़का ज्यादा करके लिखता है क्योंकि मेरे थोड़ा मेरे वो कहते मम्मी लाओ मैं लिख लेता हूँ दिन लिख लेता है
0: जी,
1: और नाइट में भी लिख लेता है।
0: जी जी जी,
1: आप लोग उनको पढ़ते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में पत्र आते हैं मैडम।
0: जी बिल्कुल, आपके हर प्रोग्राम में पत्र भी आते हैं और जब भी मैं एमएच हॉटलाइन करती हूँ मेरी हमेशा बात होती है, और अच्छी बात है कि सौभाग्य से हमेशा आपका फोन भी कनेक्ट हो जाता है।
1: जी मैडम
0: जी, चलिए बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनवाऊँ आपको?
1: अनजाना फिल्म का सुना दीजिए, रिमझिम के गीत सावन गाए।
0: जी, हम सब सावन का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से सावन आ जाए और सबको गर्मी से राहत मिल जाए, तो लीजिए।
1: हाँ, ये गाना मैं इसलिए सुन रही कि जल्दी से बारिश हो जाए तो अच्छा रहे।
0: चलिए, हम सब मिलके दुआ करते हैं तो भगवान जल्दी रहम करेगा और जल्दी से बारिश होगी। पर आइए अभी एंजॉय करते हैं मिलके ये अनजाना फिल्म का गाना। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: फरमाइशी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आइए जुड़ते हैं हमारी अगली श्रोता के साथ। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बोलता हूँ इलाही से।
0: विजय जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, बढ़िया
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये श्री 420 रमैया वत्ता भैया
0: जी। बिल्कुल, ये गीत सुनवा देते हैं आपको। आप कब से सुन रहे हैं आकाशवाणी?
1: वो टाइम हो गया मेरे को तो, लाइसेंस लेते लेना पड़ता है, जब से सुन रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, और आप
1: इस... के लिए।
0: अच्छा, और आप ही सुनते हैं या परिवार के सभी लोग सुनते
1: नहीं,
0: हैं?
1: नहीं, मैं ही सुनता हूँ।
0: अच्छा, आप ही को ये शौक है?
1: बाकी टीवी देखते हैं।
0: अभी तो टीवी आ गई है, बट एक समय था जब रेडियो का बड़ा क्रेज हुआ
1: करता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की सुबह

0: आपके अपने आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशें फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन तृप्ति के साथ में, और हमें एक से बढ़कर एक के बाद एक कॉल्स आ रहे हैं, अपनी फरमाइशें लोग सुन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपने फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन जुड़ रहा है अगले कॉल पर हमारे साथ। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, हाँ मैं दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं प्रकाश नागर बोल रहा हूँ धार से।
0: प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है
0: जी। और क्या करते हैं आप?
1: हमारी चाय की होटल है मैडम
0: जी। कहाँ है धार में चाय की होटल?
1: धार में सनी गली मंडी पे।
0: मंडी पर है तो दिन
1: अनाज मंडी के पास में
0: जी। और सुबह कितने बजे चालू हो जाता है होटल आपका?
1: सुबह 8 बजे खोलते हैं हम।
0: और रात में कब बंद करते हैं?
1: रात में 8 बजे।
0: अच्छा, और दिन भर क्योंकि मंडी में है तो काफी खरीदारी बिक्री सब होती होगी आपकी?
1: हाँ, चहल पहल रहती है, जब गांव के भी आते हैं मंडी है तो इधर जी। और फिर दवाई की दुकानों हमारी इधर जाता है, दवाई की दुकान वाले उन फिर आते हैं दवाई लेने के लिए, तो उस पे भी चाय वाय जाती है।
0: जी जी बिल्कुल। और आप अकेले और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं?
1: नहीं, हमारे और हमारी वाइफ रहती है दोनों दुकान पर, क्योंकि मैं चाय देने जाता हूँ तो यहाँ दुकान पर ग्राहकों को संभालते हैं कभी।
0: हाँ,
1: क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता है चाय देने, तो दुकान पर कोई नहीं रहता इसलिए।
0: जी बिल्कुल। और फिर आप वहीं पर रेडियो लगाकर दिन भर रेडियो भी सुनते हैं?
1: हाँ, वहीं पर दिन भर रेडियो बजता है हमारा 3 बजे तक।
0: जी जी जी। और 3 बजे के बाद फिर क्या करते हैं?
1: 3 बजे के बाद बंद कर देते हैं फिर हम।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम तो 3 बजे के बाद भी रात 11 बजे तक चालू होते हैं हमारे।
1: अभी 11 बजे तक ये चलेगा, उसके बाद फिर वो फोन इन कार्यक्रम चले हो जाएगा गाने।
0: जी जी जी जी। तो अभी वही वही। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: देखो, ये दोनों कार्यक्रम पसंद आते हैं।
0: तो आपको फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हाँ, फरमाइशी गीत, मेरे गाने सुनने का बहुत शौक है मैडम।
0: अच्छा, और किस तरह के गाने सुनना पसंद है, पुराने नए किस तरह के गाने?
1: पुराने वाले।
0: पुराने। और कौन है आपका पसंदीदा गायक कौन है?
1: ये जो लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफी है, इनके जो पुराने गाने आते हैं तो बहुत ही दिल को छू जाते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गीत होते हैं। बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए?
1: नूरी का।
0: नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: आ जा रहे हो मेरे दिल पर साजा।
0: जी जी जी। चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत। हमें फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

0: एक के बाद एक फरमाइशी कॉल हम तक आ रहे हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने MH हॉटलाइन पर, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। अगला फोन भी हम तक आ चुका है, आइए देखते हैं कौन जुड़ रहा है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: और मैं ठीक हूँ, आपके क्या हालचाल?
0: एकदम बढ़िया। बताइए, आप कब से सुन रही हैं आकाशवाणी?
1: ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बट 4-5 महीने ही हुए हैं अभी तो।
0: अच्छा, और कैसे ऐसा हुआ कि आकाशवाणी सुनना शुरू किया आपने?
1: वो तो किसने बताया था, मतलब।
0: अच्छा, और
1: मैं भोपाल सुनती हूँ, भोपाल मेरा फेवरेट है, लेकिन ना
0: जी
1: वो वहाँ रिकॉर्डिंग आने लगा तो मुझे मजा नहीं आता। फोन इन प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लाइव वाला।
0: बिल्कुल, जब ऐसे लाइव सजीव बातचीत होती है तो ज्यादा मजा आता है
1: जी। प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं, बट ना मतलब वो ना मेरा दिल नहीं बोलता, फिर मैंने सोचा इंदौर ही पकड़ लेते हैं, पास में।
0: देखिए, आप भोपाल सुने या इंदौर, बात है कि आकाशवाणी से जुड़ी है, आकाशवाणी सुन रही है, आपको मजा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और करती क्या है मैम आप?
1: मैं हाउस में करूँ
0: जी।
1: और
0: दिन भर फिर आप आकाशवाणी से कनेक्टेड रहती हैं या फिर कुछ और?
1: नहीं, मैं फोन इन प्रोग्राम सुनती हूँ
0: जी,
1: और कभी कभी आपके यहाँ डॉक्टर से मिले आता, तो कभी कभी एक दो बार उसमें भी कॉल की हूँ
0: जी। हेलो डॉक्टर।
1: बस, और बाकी ऐसा नहीं, आप लोगों जैसे अनाउंसरों से बात करने में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कॉल कर लेती हूँ मैं।
0: मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है, पर मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी कोई नया श्रोता जुड़ता है तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है हम लोगों की, कि कोई नया इंसान, जैसे कोई नया मेंबर जुड़ता है परिवार में, तो इतना अच्छा लगता है, वैसे ही आनंद आता है किसी नए लिसनर से बात करने में।
1: पर मैम, मैं तो एक बात ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपका मैं इंदौर सुन रही हूँ, तो जैसे कि अनाउंसर या फिर कोई श्रोता है
0: जी,
1: वो बोलते हैं कि कुछ श्रोता गैप देकर कॉल करें, तो करते कोई नहीं है, सब वही रहते हैं
0: जी।
1: पर मैं एक बात अपनी लाइफ में ये रूल्स मानती हूँ कि आज की दुनिया में मौका दिया नहीं जाता, मौका लिया जाता है। अगर हम

0: कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं ना
1: जी,
0: सामने वाले ने हमसे बेटर मतलब मेहनत की होगी जब ही तो उसका कॉल लगाना।
1: बिल्कुल, और मेरी बात होती है श्रोताओं से तो वो कहते हैं कि हम घंटों घंटों खाना पीना छोड़ के भी कॉल करते हैं, हम रोज कॉल करते हैं तो तब जाके उनका कॉल लगता है। थोड़ी किस्मत की भी बात होती है पर साथ ही में जो वो प्रयत्न करते हैं लगातार।
0: हाँ करते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं ना मोबाइल दो मोबाइल मतलब करती हूँ तो वो ना रिडायल पे छोड़ देती हूँ दोनों।
1: अच्छा।
0: तो अब मतलब उससे किसी के फोन भी आते, कभी कभी एक घंटे तक कंटिन्यू बिजी भी बनते।
1: क्या बात,
0: कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो, जैसे कोई मेरे कभी मेरी मम्मी फोन लगाती तो बेटा मेरा मोबाइल वेटिंग में नहीं था, बिजी बता रहा था।
1: तो ये करना होता है एक्चुअली, ये तो आपका प्रेम है और इसी वजह से ऐसा है कि आज भी कॉल लग गया और मेरे ख्याल से आगे भी आपको कॉल लगेगा।
0: हाँ। गाना तो हम लोग क्या आपको पता है, सभी लोग सुन ही सकते हैं, बस आप लोगों से बातचीत हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात वापस होगी, आप इसी तरह कॉल करती रहेंगे MH हॉटलाइन में और हम वापस जुड़ते रहेंगे। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: हाँ, मूवी का नाम है हसीना मान जाएगी
1: जी,
0: और गाने की बोले आई लव यू बेटा।
1: चलिए ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए। बाय बाय।

0: एमएच हॉटलाइन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और आइए अब लेते हैं हमारा कार्यक्रम का अगला कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, खातेगांव से बोल रहा था
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: नमस्ते नमस्ते, गोविंद जलोदिया खातेगांव।
0: गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, गर्मी है, बहुत भयंकर चल रही है
0: जी। गर्मी से तो सभी लोग बेहाल है, परेशान है।
1: हाँ, और बहुत, कल से तो बहुत ही ज्यादा है
0: जी, कल से
1: उमस
0: उमस बढ़ चुकी है और बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस ख्याल रखिए अपना, क्योंकि अब है कुछ टाइम, बस निकालना है। जब जितने जल्दी बारिश होगी उतने जल्दी सभी को राहत मिलेगी।
1: हाँ, बिल्कुल सही।
0: जी बताइए, क्या करते हैं सर आप?
1: सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं करता, रिटायरमेंट टाइप है सर, 73 साल की उम्र है मेरी।
0: जी। और कब से सुन रहे हैं फिर आकाशवाणी
1: वो
0: आप?
1: आकाशवाणी तो शुरू से ही बहुत, मतलब जो है जब कारट का जमाना था जब से सुन रहे हैं।
0: अच्छा, और क्या क्या करते थे आप पहले?
1: पहले मैं यो तो अपने नाम क्या था, खातेगांव में टाकिस था,
0: हाँ,
1: टाकिस में भी मेरा,
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: इसके बाद में मार्कोनी मेमोरियल में मैंने रेडियो ट्रेनिंग दी थी। उस टाइम रेडियो का जमाना था, रेडियो बाल वाले चलते थे। हाँ,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो मैं जेल रोड से इंदौर से ही, मतलब जो है अलका टाकिस में नौकरी भी करता था, लोगों को बिठाने का काम,
0: हाँ,
1: और वहां से चल के अपना काम भी चला थे
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: ट्रेनिंग का।
0: जी जी और
1: फिर मैंने
0: रे
1: खाते फिर आगे खातेगांव में दुकान खोली,
0: अच्छा, किस चीज़ की दुकान?
1: ये रेडियो की। हाँ,
0: अच्छा, रेडियो की दुकान खोली।
1: पहले बाल वाले रेडियो चलते थे।
0: अच्छा, और
1: हाँ
0: वो उस आप पहले इंदौर में काम क्या करते थे, फिर आपने खातेगांव में ही अपना काम
1: हाँ
0: शुरू
1: हाँ
0: कर दिया?
1: खाते वहां में कर रही है, फिर टाकिज में भी, यहाँ टाकिज था तो
0: हाँ हाँ
1: टाकिज में भी नौकरी करी, क्योंकि
0: हाँ जी, पहले का जमा।
1: वो उसमें कोई दो मतलब 7 बजे से 10-11-12 बजे तक तो नौकरी करनी पड़ती।
0: जी, बिल्कुल सही कहा,
1: बहुत
0: बिल्कुल सही कहा। पहले का दौर बहुत खूबसूरत था, अलग था, पर बड़ा खूबसूरत
1: हाँ,
0: था।
1: अच्छा था।
0: जी,
1: आजकल लोगों को पैसा होने के बाद भी सुखी नहीं है।
0: हाँ जी, बिल्कुल, सुकून तो कम हो गया है। जितना जितनी सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें मोबाइल में आ गई है, उतना हम दुनिया से दूर हो गए हैं।
1: दूर हो गए। सही
0: बिल्कुल, बताइए कौन सा
1: सर,
0: गीत सुनवाया जाए आपको?
1: ये खानदान पिक्चर का है,
0: जी
1: नील गगन के उड़ते बादल। हाँ
0: जी चलिए, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गाना। धन्यवाद हमें
1: ठीक है।
0: कॉल करने के लिए।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, जहाँ चल रहा है कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। आइए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो एमएच हॉटलाइन,
1: जय माता दी।
0: कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नाम बताइए प्लीज।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: अरे राजस्थान से बात कर रहे हैं, कैसा है राजस्थान का मौसम और तापमान?
1: जी मैडम बढ़िया है, और राजस्थान का मौसम भी अच्छा खासा हो रहा है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी,
0: अच्छा।
1: अभी तो बढ़िया ठंड, थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है।
0: अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मतलब
1: तो
0: ठंडक हो गई है, एक बारिश में ही ठंडक हो गई है।
1: जी मैडम।
0: चलिए अच्छी बात है। और आप करते क्या है?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी, तो अभी खेती के लिए आप अभी खेती में क्या काम रहेगा आगे, बारिश के पहले कोई काम या तैयारी रहती है?
1: जी मैडम अभी तो खेतों की जैसे कुछ खेतों में वो चारा है वो है, तो उसको सफाई करना है,
0: हाँ,
1: फिर वो सफाई करके फिर वो बाजरे की फसल लगाएंगे मैडम।
0: तो बुआई का क्या समय रहेगा?
1: बुआई का बस अभी थोड़ा बारिश का और मौसम होता है, साड़ लग जाएगा तो फिर उसके बाद में बारिश का मौसम चालू है।
0: वहाँ पानी की कोई समस्या?
1: पानी का तो यही है कि बरसात सावन बाद आके वो बरसात का इंतजार रहता है, तो उसी
0: जी
1: पर निर्भर है।
0: जी तो ऐसे अमूमन बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती है पानी की?
1: हाँ जी, 2 महीने में तो कोई समस्या नहीं रहती क्योंकि लगातार बारिश आती रहती है यहाँ
0: जी जी
1: राजस्थान।
0: जी और आगे फिर ठंड में?
1: ठंड में तो फिर बाजरा कट जाएगा, तो फिर ठंड में तो जिसके पानी होगा तो वो गेहूं की फसल कर लेगा, तो
0: गेहूं।
1: उम्र ना उम्र
0: हाँ हाँ जी जी
1: अगर जिसके पानी नहीं होगा तो फिर वो खेत खाली रहेंगे।
0: जी बिल्कुल। तो फिर आकाशवाणी अभी आपको समय होता है तो आप दिन भर रेडियो सुन लेते होंगे?

0: हाँ दिन भर रेडियो सुनते रहते हैं, ये तो न्यूज़ है यार, आपके माध्यम से काम भी करते रहे और रेडियो भी चलता
1: जी है। तो जब आपकी खेती बाड़ी भी चलती है तब भी आपके मोबाइल पर रेडियो चलता रहता है।
0: जी मैडम जी।
1: ये कितनी अच्छी बात है ये तो। और कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है फिर सबसे ज्यादा?
0: जी मैडम मेरे को ये फोन वाला और जो खेती बाड़ी से होता है वो, और
1: हाँ,
0: जो डॉक्टर की बात होती है, जानकारी भरा कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो हमको पसंद नहीं आता हो।
1: जी। और खेती बाड़ी वाले कार्यक्रम से आपको फिर लाभ मिलता है या नहीं?
0: जी मैडम लाभ तो मिलता है क्योंकि हमें घर बैठे जानकारी मिल जाती है और जो फसल कैसे उगानी है, कैसे क्या करना है, तो वो मिल जाता है हमको घर बैठे।
1: जी बिल्कुल, यही यही हम लोगों का उद्देश्य है कि आप लोगों से घर पर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारा जो है मनोरंजन वो पहुंचाएं हम। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: जी मैडम फिल्म का नाम रहेगा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, और गाने के बोले तेरी नजर का तीर मेरे दिल में, ऐसा कुछ गाना है।
1: तेरी नजर की कटारी। जी चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू मैडम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं यहाँ सिटी कॉन्वेंट स्कूल राजाराम नगर से बोल रहा हूँ, देवास से।
0: जी
1: राजू राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, दीदी नीमी श्रोता 45 वर्ष से।
0: राजू अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, चिट्ठियों से भी हम जुड़े हुए हैं, करीब 9-7 साल चिट्ठियों भी लगातार
0: जी
1: फरमाइश में।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और रेडियो पे अभी कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं, करीब 5-6 रेडियो है मेरे पास फिलहाल अभी।
0: अरे वाह।
1: दो दुकान पे न, दो घर पे, मतलब अलग अलग विविध भारती अलग चलता है, ये इंदौर का अलग,
0: आकाशवाणी अलग चलता है, ताकि कहीं भी ना छूटे।
1: जैसे रेडियो खराब भी हो जाए तो दूसरा तैयार है ऐसा।
0: कितने अच्छे।
1: हाँ बैटरी का सेल का अलग।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: जी तो ये गीत आज सुनवा दीजिए, ये अपने अधिकार फिल्म का गीत है, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, रमे रफी साहब की आवाज में और रमेश पंत और RD बर्मन साहब का बनाया हुआ
0: गीत है। जी जी जी, चलिए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा देते हैं ये गीत, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

0: पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है कभी जो गम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता,
1: जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन। अब है अगले कॉल की बारी। हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो
2: नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किससे बात हो रही है मेरी?
3: जय श्री कृष्णा
2: जी। कौन बोल रहा है, आपका नाम बताइए प्लीज।
3: मैं कारुंगा छोटी सादड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ, रतनलाल संसार।
2: रतनलाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
3: बहुत दिनों बाद बात हो रही है और मुझे भी आज फोन लगने में भी वो काफी लंबा समय लग गया, मेरी उंगलियां जलने लग गई है।
2: लेकिन देखिए सब्र का फल मीठा होता है, आपका कॉल लग गया है। कार्यक्रम का आखिरी गीत ही था और आखिरी कॉल था और आपका कॉल लग गया। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
3: फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने
2: जी। चलिए
3: और आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से 90 वर्ष की शुभकामना। मैं स्टाफ को पूरे समस्त आकाशवाणी वर्ल्ड के जितने भी हैं अपनी पहुंच जहां तक है वहां तक
2: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: और मेरे पास में लाइसेंस बनते थे उस समय से रेडियो
2: जी। क्या बात, क्या बात है, मतलब इतनी अच्छे इतने समय से आप कंसिस्टेंटली आप लगातार सुन रहे हैं रेडियो, तो ये तो काबिले तारीफ है। चलिए आपके पसंद का ये गाना आपको सुनवा देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद, और आप ऐसे ही कॉल करते रहिए, हम आपसे ऐसे ही बात करते रहे। कॉल करने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोनन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तृप्ति को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करिए, गीत सुनिए।
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।
3: नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त श्वेता। बशीर बद्र साहब का एक मशहूर मतलब कहना चाहिए एक लाइन है जिन्हें मैं कहना चाहूंगी, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, जहां दरिया समुन्दर से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, है ना। तो आप भी इस बात के लिए हमसे सहमत होंगे कि हमारा और आपका भी रिश्ता एक प्यार भरा स्नेह भरा रिश्ता है, और आज हम इसी कार्यक्रम से भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम चाहेंगे आपके पसंदीदा गीत सुनवाएं, जिसके लिए आप हमें फ़ोन करेंगे इन नंबरों पर 2660902, बाहर के श्रोता साथी STD कोड लगाकर 0755 हमें लगाकर फ़ोन कर सकते हैं और अपने विचार और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो इंतज़ार है हमें आपके फोन। जी
4: हेलो।
3: हाँ हेलो, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है?
4: जी दीदी आ रही। नमस्कार।
3: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
4: जी दीदी, मैं अपना पहले परिचय दे दूं फिर।
3: जी जी,
4: मैं दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूं दीदी।
3: रोशन सिंह यादव, कहां से बात कर रहे हैं आप एक बार?
4: रोशन सिंह।
3: हाँ जी,
4: यादव नहीं।
3: अच्छा अच्छा, सॉरी, रोशन सिंह कहाँ से?
4: जी,
3: जगह का नाम?
4: दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश।
3: जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में फोन करें गीत सुने में। पहले बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
4: दीदी फिल्म का नाम तो मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन गाने के बोल हैं चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यारा है तुझ पे।
3: चलिए हम सर्च तो करेंगे, लेकिन बताएं ना आप कौन से फिल्म का गीत है ये? नहीं याद है
4: मतलब मुझे फिल्म का नाम नहीं पता।
3: चलिए एक और बता दीजिए हमें, है ना, एक और फिल्म का। हाँ, एक और गाना।
4: एक और मैं यही वाला बस सोच के आया था, मतलब
3: आपकी पसंद के तो और भी गीत हो सकते हैं, है ना।
4: जी जी, वो मतलब फिल्म का गाना वो भी नहीं है, मतलब गाना है वो भी ऐसे ही।
3: जी,
4: कोई फिल्म नहीं है, भला किसी का को हम साथ साथ हैं का है।
3: जी जी जी जी, बिल्कुल,
4: मतलब ये तो सच है कि भगवान है।
3: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, है ना।
4: जी जी जी जी जी,
3: तो
4: दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
4: जी दीदी, मैं आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है और आपकी आवाज बिल्कुल सुनीता सिंह दीदी जी से मिलती है।
3: हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, है ना।
4: जी
3: जी, तो बताइए कैसा है वहाँ मौसम का हाल चाल?
4: दीदी मौसम का हवाएं चल रही है, मतलब रोज बादल हो रहे हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज्यादा तो अभी नहीं हो रही है, छिटपुट वर्षा हो रही है।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना,
4: मतलब गर्मी तो है ही भला।
3: हाँ,
4: गर्मी का क्या कहना है,
3: सही बात है ना। और थोड़ी क्या होता है कि हमें ठंडक तो मिलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी उमस भी शुरू हो जाती है ना।
4: जी जी, हल्की बारिश होती है तो फिर से उमस हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ही मतलब सबकी आधारा है, अब हम ही पेड़ पौधे कटवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं कोई, मतलब
3: जी जी जी बिल्कुल
4: जी, है ना, इसीलिए हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है,
3: बहुत
4: मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे दीदी लगे हुए हैं, करौंदे के हैं, नींबू के हैं, आम के हैं, और भी मतलब बहुत सारे महुए के हैं, कनायर के हैं, मतलब फूल होते हैं जो।
3: बहुत बढ़िया, आपने पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं, और आपकी बात सुनकर हमें अच्छा भी लगा और सारे लोगों तक की संदेश भी पहुँच रहा है कि अपने आस पास पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, है ना।
4: अगर पेड़ एक पेड़ कटाएं तो चार दीदी लगाएं, हम यही
3: बिल्कुल बिल्कुल है ना, हम यही चाहेंगे, क्योंकि अपने चारों तरफ अगर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से गर्मी कम होगी, है ना। आपने फोन किया,
4: यही अपने श्रोताओं से जो भी सुनना चाहते हैं तो
3: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, तो आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
4: जी। दीदी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
0: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
1: जी, तो चंदेल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
0: नहीं,
1: तो
0: सही है बहन जी, सही है।
1: हाँ, सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप।
0: बस बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ,
1: जी
0: और मैं कि आप भी बढ़िया हो।
1: बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे बात करके। अपनी जगह का नाम
0: जी,
1: बताएं जरा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना,
1: जी
0: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
1: जी
0: जी।
1: तो बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा खानदान,
1: जी
0: और गाने के बोल रहेंगे, नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
1: बहुत ही प्यारा गाना है ये ना। बिल्कुल, अभी मौसम भी कुछ इस कदर हो गया है ना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ कैसा मौसम है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है।
0: हाँ, बारिश तो नहीं हो रही,
1: हाँ
0: लेकिन बदल है, मतलब मौसम ऐसा ही है, कुछ गर्मी भी है, बदल भी है,
1: जी जी जी
0: बूंदाबांदी भी हो जाती है,
1: हाँ
0: तो मिला जुला मौसम है, यानी बढ़िया मौसम है।
1: हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या खेती है आपकी, खेती किसानी
0: हाँ
1: करते
0: बहन जी, मैं खेती किसानी करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ,
1: हैं।
0: किसान हूँ, और आकाशवाणी सुनता रहता हूँ। इससे क्या है, खेती किसान के लाने बढ़िया कार्यक्रम आते हैं,
1: जी
0: तो वो हमको लाभ दे जाते हैं, क्या
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: होता।
1: जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो
0: जी
1: चलिए,
0: बहन जी,
1: आपने
0: आपका शुभ नाम जानना।
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ, है ना।
0: अच्छा,
1: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद।
0: कुछ कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आपके मित्रों के नाम।
0: दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से,
1: जी
0: और फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं,
1: जी
0: सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा बहन जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने इतने अपने सारे मित्रों का नाम लिया, हमें भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और
0: जी
1: इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, फोन करने के लिए आपका
0: जी

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ दीदी, नमस्ते। आपके
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: जी, तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपने फोन किया है कार्यक्रम,
1: बिल्कुल
0: फोन
1: बिल्कुल
0: करें गीत सुने में, है ना
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही
0: जी?
1: जगह लगा।
0: हाँ, तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हमें सुनना है बॉर्डर फिल्म का,
0: बॉर्डर फिल्म का गीत। जी
1: संदेश आते हैं, चिट्ठी आती फौजी भाइयों के लिए।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाता हूँ मैं, उसी की तैयारी चल रही है
0: अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो भी
1: आज।
0: सुनते हैं?
1: अरे दीदी, कम से कम 18 साल हो गई हमारे लिए रेडियो बिल्कुल सुनते सुनते।
0: हाँ, आज मैं मैच बहुत अच्छा लगा, है ना, कि आप
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: दीदी,
0: यहाँ।
1: आपके तो हम नियमित श्रोता हैं और पत्र भी डालते हैं, ग्राम सभा है,
0: अच्छा।
1: सभी कार्यक्रम है, लोक रंग है, पूरे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और सुझाव भी आपके लिए हम भेजते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चलिए, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: दीदी, नमस्ते नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार मैम। नमस्कार।
0: जी आपका नाम बताएं। हाँ
1: मैं कृष्ण व कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूर मनमोजी बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत।

0: और
1: और
0: जी
1: आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में, है ना? तो पहले
0: जी आप
1: बताएं
0: मुझे
1: कौन
0: बताना
1: सी,
0: चाहूँ
1: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी,
1: पहले बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: मुझे जीने नहीं दूंगा गाना सुनना मैं।
1: जीने नहीं दूंगा, कौन सा गाना है इसका?
0: बादल रेशमा तुम याद ना आया करो।
1: अच्छा, एक और कोई मतलब बता दीजिए।
0: आपके हिसाब से सुना दो मैडम, आज तो आज आपकी आपकी
1: नहीं
0: फरमाइश
1: नहीं
0: सुनेंगे हम।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, हर इंसान की बहुत सारी पसंद तो बहुत सारी होती है ना फिल्मी गानों की।
0: हाँ
1: एक और हमें चॉइस बता दीजिए, है ना?
0: अच्छा, ये है ना,
1: हाँ
0: ये मुद्दत का मिल जाएगा मैडम।
1: हाँ जी बिल्कुल, है ना, सुनाएंगे आपको।
0: यारी
1: हाँ
0: हमारा
1: बिल्कुल मिल जाएगा।
0: मेरी
1: चलिए, आपने देखिए गा के भी हमें सुना दिया है ना। चलिए,
0: हाँ जी
1: आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी जी।
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम बाबू यादव है दीदी,
0: जी
1: और मैं सारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी
1: जी
0: बताएं।
1: आपका नाम भूल रहा हूँ, जरा बता दीजिए। जी
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना।
1: जी जी
0: तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: हाँ दीदी, हमको सुना दीजिए फिल्म मेरा साया का है, कि तू जहाँ जहाँ चले जा मेरा साया साथ होगा, लता जी ने गाया हुआ है। जी
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ना।
1: जी
0: आपकी पसंद भी बड़ी प्यारी है ना। क्या करते हैं
1: और
0: आप।
1: ये दीदी मेरी श्रीमती जी के लिए डेडिकेट रहेगा विशेष
0: बिल्कुल
1: तौर से।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: हाँ नमस्ते बहन जी
1: नमस्ते। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
0: जी। मैं ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ बहन जी।
1: जयपाल यादव। अच्छा बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: जी आज मुझे एक फिल्म का नाम है जुनून, इसमें गीत है जो प्यार कर गए वो कुछ ऐसा गीत है, वो
1: बिल्कुल।
0: जुनून फिल्म का है।
1: अच्छा एक और पसंद का भी गीत बता दीजिए आप, एक और पसंद बता दीजिए अपनी।
0: अच्छा एक और पसंद में
1: हाँ
0: तो एक फिल्म का नाम है जानवर, इसमें गीत है अलका याग्निक जी का गाया हुआ गीत है
1: बिल्कुल
0: मौसम की तरह।
1: बिल्कुल है ना, बिल्कुल
0: जी
1: सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद के ये सारे मतलब ये गीत। क्या
0: जी
1: करते हैं आप?
0: जी बहन जी, वैसे तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, मतलब जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जन योजनाएं हैं उन उन तक गरीब असहाय तबके बच्चों को या परिवारों को लाभ दिलाने का काम करता हूँ, वो खाद्यान्न विभाग से जुड़ा हूँ।
1: जी, और साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल, आपके मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं और जो भी आपके यहाँ से ज्ञान से भरी या मनोरंजन से या जानकारी मिलती है तो वो अपने जीवन में और जो खेती से संबंधित उन किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक आपके केंद्र से सुनकर उनको लाभ दिलाएं।
1: हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा, और
0: जी
1: इसी
0: जी
1: तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। फोन करने के
0: जी
1: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: जी नमस्कार,
1: नमस्ते मैम।
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं शिवानी मेहरा बात कर रही, नीमच से।
0: नीमच से बात कर रही हैं जी। तो कैसी हैं आप?
1: अच्छी मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मूवी का नाम है गुमनाम और गाने ही बोले मोहब्बत से ज्यादा।
0: गुमनाम। अच्छा, ये पुरानी वाली मूवी ना?
1: हाँ मैम, ज्यादा पुरानी भी नहीं है।
0: हाँ,
1: हाँ 90 के, मतलब 90 या 2000 समथिंग की है।
0: अच्छा। एक और अपनी पसंद का गीत बता दीजिए, है ना?
1: सलामी मूवी का जब हाले दिल।
0: हाँ जी। तो क्या करती हैं आप?
1: मैं तो कुछ नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ।
0: और रेडियो सुनती हैं? मेरी ख्याल से
1: जी
0: मेरी
1: हाँ,
0: आपसे
1: कभी कभी
0: और भी
1: गाना
0: बात हो
1: वाना तो
0: चुकी
1: सुन लेती
0: है ना, इससे पहले भी
1: हूँ।
0: बात हो
1: हाँ
0: चुकी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने कामकाज के साथ साथ रेडियो भी सुनती हैं, है
1: जी
0: ना?
1: मैम, आप कौन सी मैम बात कर रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है
1: जी
0: ना?
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। हमें आपके विचार जानकर और आपके पसंदीदा गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आप इसी तरह हमें फोन करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। श्री अमित शाह, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और राज्य सरकार ने शासकीय सेवा के लिए 2 बच्चों की अधिकतम सीमा निरस्त संबंधी नियम को निरस्त कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। अगले श्रोता मालवा से हैं रतलाम, बलवंत कुमार, राजू वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आज़ाद से। गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद, अभयनंद, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर प्रीति सागर के हैं। गीत लिखा हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना ने, गीत को संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधी बाग अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे आप फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती, बासु और साथियों ने। गीत लिखा गुलशन बावरा ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। चलिए सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
4: दुखी बेदुखी।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता हैं राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, रोहित, पूरन, छोटू डुनडुन। इन्हीं के साथ अगले श्रोता किशोरी बोस हैं, प्रियंका बाथरे, बसंत बाथरे, सरोज तिवारी, अजीत, हिमांशी, नितिन, आशीष और ममता। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
6: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
10: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
9: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
11: आकाशवाणी इंदौर।
10: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
10: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
9: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
10: अरे काहे का मजा।
9: क्यों, क्या हुआ?
10: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
9: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
10: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
9: ये हुई ना बात।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
3: इंदौर।
0: अरे दीदी धीरे धीरे।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: पर सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का पांचवा भाग।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, लिचू अपने बेटे जगन्नाथ से पीने के लिए पानी मांगता है। जगन्नाथ पानी लेने जाता है। लिचू अपनी पत्नी की लाश को गिद्धों चीलों द्वारा नोचकर खाए जाने के विभत्स दृश्य को याद करता है। शिबू और लिचू अपने समाज की दयनीय दशा और हड़ताल की भयावहता को लेकर बात करते हैं। जुड़वा भाई रामू और बामू ठाकुर साहब की चापलूसी करके उसके साथ नशा करते हैं। दोनों ठाकुर साहब को मजदूर यूनियन की गोपनीय बात बताते हैं। शिबू और यशवंत के बीच यूनियन नेताओं की मौका परस्ती को लेकर गंभीर चर्चा होती है। तभी शिबू को खांसी उठती है और बलगम के साथ खून निकलता है। यशवंत उसे टीबी होने की बात बताता है। शिबू यशवंत से खुलकर बात करता है। यशवंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब

0: नारायणी, ओ नारायणी, तेरा दरवाजा तो खोल नारायणी।
1: खोल रही हूँ जी।
2: नेताजी आप ही साथ हैं?
3: अब शिबू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा खटिया तक इसे पहुंचाने दे।
2: आइए
3: चल चल, खटिया पर लेट जा शिबू।
2: क्या हुआ, क्या हुआ आपको?
3: नारायणी इसे टीबी हो गई है, इसे आराम और अच्छे खाने पीने की सख्त जरूरत है।
2: अच्छे खाने की? घर में खाने के लिए तो होता नहीं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी मैं?
3: जैसे भी हो, शिबू की दवा दारू भी बराबर चलती रहनी चाहिए। देख, डॉक्टर ने खास हिदायत दी है।
2: आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
3: अरे एहसान कैसा नारायणी, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा शिबू, अपना ख्याल रखना।
0: हाँ यशवंत जी, ठीक कहते हैं, मैं अपना ख्याल।
2: आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी।
0: रोज रोज मीटिंग होती है।
4: अरे भैया, यूनियन का हमको तो कुछ समझ नहीं।
5: मजदूर किसान भाइयों,
4: सुनो सुनो, कुछ कह रहे हैं।
5: आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मजदूर हड़ताल में किसानों का क्या काम।
4: हाँ ठीक,
5: लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रही है।
4: अच्छा,
5: ये धरती हमारी माँ है, जब तक किसान और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति चौकस नहीं होंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं।
4: ये बात तो सही,
5: हमें एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
6: मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता
7: जिंदाबाद,
6: मजदूर किसान एकता
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब।
5: शांत साथियों, शांत। यूनियन चाहती है कि जमीन रखने की सीमा 150 बीघा से घटाकर 60 बीघा कर देनी चाहिए।
4: हाँ, 60 बीघा से तो
5: जमीन से किसानों को खदेड़ना बंद होना चाहिए। अधिया पर खेती करने वालों को जमीन पर पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कर लेना बंद होना चाहिए। होलसेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ब्याज का इंतजाम हो, और भी बहुत से नियम बनाने चाहिए। लेकिन इन मांगों को पूरा करवाने के लिए मजदूरों और किसानों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल को सफल बनाना होगा। किसानों, मजदूर

0: मजदूरों को क्रांति करनी होगी। क्रांति
1: मजदूर किसान नेता
2: शास्त्री जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
3: शास्त्री जी कहाँ है? शास्त्री जी तो अभी तक आए नहीं है।
2: क्या शास्त्री जी अभी तक नहीं आए? तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें शास्त्री जी समझ रही थी।
3: यशवंत लगता है ये महिला पहली बार सभा में आई है, इसे बता कि हम कौन है।
4: अरे नारायणी
2: जी,
4: नारायणी ये शास्त्री जी के एजेंट बलबीर स्वामी है।
2: एजेंट? ये एजेंट का क्या मतलब होता है?
4: एजेंट अंग्रेजी का शब्द है नारायणी।
2: अब मैं क्या जानू अंग्रेजी विंग्रेजी?
4: एजेंट को अपनी हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं।
0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और ये किस पे हंस रहे हो तुम लोग?
2: दलाल पर तो जमाना हंसता है, फिर हम तुम पर हंस रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
0: क्या कहा? मैं और दलाल? नहीं, मैं तो शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक?
2: लगता है दलाल को अब सहायक कहा जाने लगा है। कोई बात नहीं सहायक जी, बताइए तो जरा हड़ताल कब तक चलेगी?
0: हड़ताल? हाँ,
5: बताइए।
0: 15 दिन के भीतर कंपनी हमारे आगे झुक जाएगी। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तब हर मजदूर खुशहाल होगा।
5: इस बात की गारंटी दे सकते हैं?
6: हाँ, बताइए क्या गारंटी है इस बात की? बताइए।
0: देखिए अभी हमारे बीच शास्त्री जी आने वाले हैं और गारंटी भी वही देंगे। भाइयों, शास्त्री जी हमारे बीच आ चुके हैं।
5: अरे
0: आप लोग जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं यूनियन के दलित प्रतिनिधि यशवंत से अनुरोध करूंगा कि वो शास्त्री जी को मजदूरों की ओर से गुलाब के फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करें। लो ये हार लो और शास्त्री जी के गले में डाल दो।
4: लाइए बलबीर भाई। शास्त्री जी
7: लीजिए। धन्यवाद साथियों, आज हमने एक दलित के हाथों हार पहनकर दलितों को सम्मान दिया है। हमारी नजर में दलित भी इंसान है, उनके साथ भेदभाव की नीति का खात्मा होना चाहिए।
8: क्या बात है, क्या बात है।
7: हम सभी को मिलकर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
9: शास्त्री जी
10: जिंदाबाद।
9: शास्त्री जी
10: जिंदाबाद।
9: शास्त्री जी संघर्ष करो,
10: हम तुम्हारे साथ हैं।
9: शास्त्री जी संघर्ष करो,
10: हम तुम्हारे साथ हैं।
9: दलित नेता यशवंत भाई
10: जिंदाबाद। जिंदाबाद
9: दलित नेता यशवंत भाई
10: जिंदाबाद। जिंदाबाद
7: साथियों, यूनियन आप लोगों के लिए 2 साल से आंदोलन कर रही है। ये हड़ताल आर पार की लड़ाई होगी। मजदूर किसानों को आशंका सता रही होगी कि हड़ताल के लिए धन कहां से आएगा। धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनियन की देश भर में 7 शाखाएं खुल चुकी हैं। हर शाखा से धन आएगा। दिल्ली मुख्यालय ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है।
2: बलबीर स्वामी ने कहा है कि कंपनी 15 दिनों के अंदर हमारी शर्तें मान लेगी, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे?
7: 15 दिन लगे या महीना, कंपनी को हमारी शर्तों के आगे झुकना ही होगा। साथियों मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई भी मजदूरों का साथ दे रहे हैं। जब किसान भाइयों के हित की बात आएगी तो मजदूर भाई भी किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। इस बात का सबूत आज यहाँ किसान भाइयों की मौजूदगी है।
8: किसान मजदूर एकता।
7: साथियों मुझे सूचना मिली है कि सरप्लस मजदूरों की लिस्ट लगा दी गई है, छटनी की जाने वाली है। कंपनी के इस हिमाकत का विरोध करने के लिए हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हमारे मजदूर हड़ताल के लिए तैयार है?
2: क्या होगा हड़ताल से? कंपनी कहती है कि काम नहीं तो पगार नहीं। पगार बिना हम अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या इन भाषणों से? नहीं, हमें नहीं करनी हड़ताल।
3: अरे नारायणी ये तू क्या गजब कर रही है? इस वक्त तेरा शांत रहना ही अच्छा होगा।
2: अरे यशवंत तू नारायणी के कान में क्या फुसफुसा रहा है रे? ठीक ही तो कह रही है नारायणी। अरे हड़ताल करवा कर क्यों तू चीलो गिद्धों को निमंत्रण दे रहा है?
11: भाइयों, हम नारायणी की बात का समर्थन करते हैं।
12: हाँ।
11: हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
12: हाँ, हाँ, हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
7: साथियों, साथियों मेरी बात सुनो। आज हम हड़ताल की तारीख घोषित करने वाले थे, मगर लगता है कि हमारे बीच कंपनी के कुछ चमचे भी मौजूद हैं, जो कंपनी के इशारे पर मजदूरों के बीच फूट डालना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, मगर हम कंपनी के इन दलालों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।
11: भाइयों, ये शास्त्री झूठ बोल रहा है। अरे चलो भाई चलो, पेट पालने का इंतजाम करे, घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे चलो चलो।
12: भाइयों, भाषणों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है।
7: अरे किए कराए पर पानी फिर गया।
4: क्या करें शास्त्री जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
3: इस पत्थर को क्या देख रहे हो यशवंत? इस पर स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में शहीद हुए अनाम लोगों के नाम खुदे हुए हैं।
4: हाँ वही पढ़ रहा हूँ। अरुण कुमार उर्फ लाल आजाद, सरयू प्रसाद, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह और गरीब हुसैन।
3: अरे यशवंत, अरे अभी तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें। तुम्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है। तुम यूनियन की वर्दी का सम्मान करना सीखो। पर इन मरे हुए लोगों के नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
4: बलवीर स्वामी,
3: हाँ,
4: इस पत्थर पर मरे हुए लोगों के नाम नहीं, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान न्योछावर कर देने वालों के नाम है। इन शहीदों के नाम से ही हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुमने इन शहीदों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम शास्त्री के सहायक हो।
3: यशवंत देखो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को पहचान नहीं सका। इन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो देखो, इनके आगे मैं अपना शीश नवाता हूँ, ठीक है?
4: अच्छा अच्छा, खैर जाने दो। तुम कह रहे थे कि शास्त्री जी का संदेशा लेकर आए हो?
3: हाँ, शास्त्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त।
4: भला शास्त्री जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
3: भाई ये तो शास्त्री जी ही बताएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी साइकिल लेकर अभी चलो।
4: देखो बलवीर, मेरी अपनी कुछ शंकाएं हैं।
3: हाँ,
4: पहले उनका समाधान करो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
3: भाई तुम्हारी तमाम शंकाओं का समाधान शास्त्री जी के पास है, जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। अब तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो,
4: ठीक है चलो।

0: सब ठीक हो जाएगा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
1: नारायणी
0: जी,
1: नारायणी
0: बोलो।
1: मेरे जैसे नकारा इंसान का मर जाना ही बच्चा है।
0: नहीं नहीं,
1: एक तो बेकार, ऊपर से बीमार।
0: पानी दो क्या?
1: नहीं, बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, टीबी है मुझे, टीबी। एक दिन मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी ये महामारी।
0: शुभ शुभ बोलो जी, औरत तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसका सुहाग बना रहता है। इधर पति ने आंख मूंदी, उधर समाज की गिद्ध दृष्टि जम गई। आपको मेरी कसम, मैं कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना।
1: नारायणी, मैं जिंदा हूं ही कहां? अरे मैं तो अपनी लाश ढो रहा हूं, अपनी लाश। कुछ दिन बाद इस लाश से बदबू उठने लगेगी।
0: नहीं, नहीं।
1: तो तुम खुद ही मुझसे घृणा करने लगोगी।
0: नहीं,
1: हाँ घृणा।
0: ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, मेरा ना सही, इस बच्चे का तो ख्याल करो। आप नहीं रहे तो इसे पिता का दुलार कौन देगा, कौन देगा इसे पिता का दुलार?
1: मैं समझता हूँ नारायणी, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी?
0: ये क्या, आप तो रोने लगे।
1: अरे नारायणी, रोना तो क्या करूँ, कितना विवश हूँ मैं। अरे मुझे किसी का पति, किसी का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
0: अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
1: नहीं नारायणी, नहीं। देखो नारायणी, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
0: नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है।
1: मेरी बात सुनो, तुम मेरी ब्याहता हो, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और तुम घर संभालो।
0: लेकिन
1: मगर देखो, मेरी किस्मत देखो, कमाने तुम जाती हो और घर में मैं पड़ा रहता हूं। मैं अपंग बनकर, अपंग बनकर पड़ा रहता हूं।
0: नहीं,
1: मैं
0: ऐसा ना कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारे दिन भी फिरेंगे और फिर सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हर रात के बाद भोर का उजियारा होता है, हमारी जिंदगी में भी सुख का उजियारा जरूर आएगा।
1: नहीं नारायणी, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
0: सुख का उजियारा जरूर आएगा, यकीन मानिए, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
1: ठीक नहीं होगा, नहीं होगा।
0: मुन्ना जा क्या है, मैं इसे चुप कराती हूँ।
1: जा, तू इसे जाकर चुप करा, मेरी बात छोड़, मैं आराम करता हूँ। जा, तू मुन्ने को संभाल, जा।
0: ना रो मुन्ने, ना रो, चुप हो जा मेरी लाडली। मैं तेरे लिए मेले से खिलौना लाऊंगी। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, गुड़िया लाऊंगी तेरे लिए। चुप हो जा मेरी लाडली, चुप हो जा मेरा बेटा। अरे अरे, तू तो और जोर से रोने लगा, लगता है तू भूखा है। मैं तुझे दूध पिलाती हूँ।
1: दूध पिलाती हूँ? दूध पिलाएगी कहाँ से? अरे शरीर में जान होगी तो दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाएगी।

0: राम राम शास्त्री जी।
1: राम राम। तो आ गया यशवंत
0: जी, बलवीर स्वामी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है।
1: हाँ यशवंत, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है।
0: शास्त्री जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
1: उस दिन कंपनी के दलालों ने सभा को सफल नहीं होने दिया। कंपनी नहीं चाहती कि दलित मजदूरों और दूसरे मजदूरों को उनका अधिकार मिले, और यही वजह है कि हमें बलबीर को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। ये बलबीर कहाँ रह गया?
0: जी वो बाहर किसी से बतिया रहा है, बस आता ही होगा।
2: मैं हाजिर हूँ शास्त्री जी।
1: जी हाँ हाँ बलबीर
2: जी। जी
1: अब हम असल बात शुरू करते हैं।
0: शास्त्री जी आप बात शुरू करें।
1: देख यशवंत, तू दलितों का नेता है
0: जी,
1: सभी तेरा सम्मान करते हैं, तेरी बात

0: मांगते हैं।
1: सो तो ठीक है।
0: मुझे लगता है कि तेरे समाज के कुछ लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है।
1: नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है।
0: ऐसा ही है यशवंत, बिल्कुल ऐसा ही है।
1: चीपो,
0: सभा वाले दिन हड़ताल के विरोध में उस स्त्री ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो स्त्री दलित लाइन में ही रहती है ना?
1: कौन? नारायणी?
0: हाँ, शायद यही नाम होगा उसका। शायद वो कंपनी के अधिकारियों से मिली हुई है।
1: नहीं शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी, आपका शक बिल्कुल गलत है। नारायणी ऐसा नहीं कर सकती।
2: तो फिर उसने उस दिन हड़ताल का विरोध क्यों किया था?
1: अरे बलवीर, उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। अगर हड़ताल का मकसद हमारे हित से जुड़ा है तो उसे समझाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा।
0: गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पैक पिएगा?
1: जी शास्त्री जी, मैं पीता नहीं।
0: पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये शराब। भाई, हमने यूनियन का स्थानीय अध्यक्ष बलबीर स्वामी को बना दिया है। क्यों?
1: लेकिन शास्त्री जी, वो पहले वाले अध्यक्ष का क्या हुआ?
2: शास्त्री जी को उस पर विश्वास नहीं रहा। वो कंपनी के साथ मिलकर हड़ताल को बीच में ही खत्म करवा सकता है।
1: फिर तो उसे हटाकर अच्छा ही किया। कंपनी से ज्यादा हमें अपने बीच के गद्दारों से खतरा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन
1: जी।
0: दलित मजदूरों का जिम्मा तुझ पर रहा। बलबीर स्वामी कल जाकर कंपनी के अधिकारियों को हफ्ते भर का नोटिस देगा, ठीक है?
1: जी।
0: अगर नोटिस पर कंपनी ने संज्ञान न लिया तो 20 तारीख से हड़ताल होगी।
1: सो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मजदूर मुझसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा?
0: कैसे सवाल?
1: वो हड़ताल से होने वाले नफा नुकसान का सवाल उठा सकते हैं।
2: हाँ शास्त्री जी, अब मजदूरों का दिल जीतने के लिए हमारे पास ठोस जवाब तो होना ही चाहिए ना।
0: यशवंत
1: जी,
0: तू अपने इलाके में दलित मजदूरों की सभा का आयोजन कर।
1: ठीक है,
0: मैं बलबीर स्वामी को सब समझा दूंगा। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
1: जी,
0: रही बात नफे की, तो हड़ताल होने से नफा ही नफा है। बता, कब होगी ये सभा?
1: शास्त्री जी, कल शाम को ठीक रहेगा?
0: हाँ ठीक रहेगा।
1: मेरा आपसे एक अनुरोध है।
0: अरे तू तो अपना खास आदमी है, अनुरोध क्यों करता है? तेरा तो हक है हम पर, अपना हक समझ कर क्या बोल।
1: इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी, वो मैं चाहता हूँ कि नोटिस कल की बजाय परसों दिया जाए।
0: ऐसा क्यों चाहता है तू?
1: शास्त्री जी, मैं चाहता हूँ कि नोटिस सभा में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाए। इससे मजदूरों के मन में रही सही शंका भी जाती रहेगी और मजदूर दिल खोल कर हमारा साथ देंगे।
0: भाई बहुत खूब, बहुत खूब यशवंत। तू मजदूरों की नब्ज अच्छी तरह पहचानने लगा है।
1: अरे शास्त्री जी।
0: ऐसा ही होगा।
1: अब शास्त्री जी, अगर अब मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलना चाहूंगा, वो कल की सभा की तैयारियां भी करनी है ना मुझे।
0: ठीक है यशवंत, तू जा।
1: अच्छा शास्त्री जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। ये तूने बहुत अच्छा किया बलबीर स्वामी, जो इस दलित नेता को अपने वश में कर लिया। अरे स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यशवंत को अपनी मुट्ठी से निकलने मत देना, समझा? ये आदमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हाँ।
2: आखिर सहायक किसका हूँ? आपका शास्त्री जी, आपका। मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: बलबीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर बना रहेगा।
2: शास्त्री जी, हड़ताल में चंदा भी तो खूब आएगा ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी।
0: देख बलबीर, यूनियन के चंदे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई अब अध्यक्ष तू है, अरे यूनियन के फंड का तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना है।
2: धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। अब शास्त्री जी, अंधेरा हो चुका है, आप कहें तो।

0: देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर नारायणी, हड़ताल हम लोगों के भले के लिए ही हो रही है।
1: क्या हमारे भले के लिए? नेताजी, क्या भूखे पेट रहने में ही हमारी भलाई है? बच्चों को भूख से तड़पता देखने में हमारी भलाई है? नहीं नहीं, ऐसी भलाई ना तो आज तक मैंने कभी देखी है और ना सुनी है।
0: देख नारायणी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। और देख, नींव जितनी मजबूत होती है उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही टिकाऊ होती है।
1: वाह वाह नेताजी वाह, तो आपने भी धूर्त नेताओं वाले तमाम लटके झटके सीख लिए। आपको तो बधाई देनी चाहिए बधाई।
0: खामोश खामोश हो जा नारायणी, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही नेतागिरी करनी आती है मुझे। अरे मैं तो अपने दलित भाइयों का भला चाहता। अपमान और शोषण की जिंदगी से दलित मजदूरों को उबारना ही मेरा मकसद है नारायणी।
1: अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि हड़ताल हमारा किस तरह भला करेगी।
0: अब वो यूनियन के अध्यक्ष बलबीर स्वामी आज शाम हम लोगों के बीच आएंगे और वही सारी बातें समझाएंगे।
1: समझाएंगे या बहकाएंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमें हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश करेंगे।
0: देख नारायणी, मैं तुझे अपना समझकर समझा रहा हूँ। हाँ।
1: क्या आप मुझे अपना समझते हैं?
0: अरे नारायणी, वो मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। देख मेरी बात मान और शाम को होने वाली सभा में अपनी जुबान बंद रखना, समझी?
1: ठीक है, मैं अपना मुंह सी लूंगी।
0: अच्छा, अब चलता हूँ।
2: अम्मा, अम्मा।
3: अरे कौन है रे?
2: मैं हूँ अम्मा, तेरा बेटा भृगु।
3: भृगु बेटा। अच्छा।
2: और अम्मा, ये तेरी पोती पार्वती भी है।
3: अरे भृगु बेटा, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की सुधा आ गई है। अरे बेटा, तुझे देखने को तो हमारी आंखें कब से तरस रही थी। आजा बेटा, आजा। ओ पार्वती, आजा
1: दादी।
2: अम्मा, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं।
1: हाँ दादी, अब हम आपके साथ रहेंगे।
3: ये क्या कह रही है पार्वती?
1: दादी, बापू को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।
3: क्या?
4: अब हम यही रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य मंत्रियों ने भी श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवा और बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए सुनिए आज का महिला कार्यक्रम।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने परिवार और बच्चों के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान अतुलनीय और बहुआयामी रहा है। वो न केवल मानव जीवन का आधार हैं, बल्कि परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर क्षेत्र की धुरी हैं। सखियों, कृषि की शुरुआत भी सबसे पहले महिलाओं ने ही की थी। उन्होंने ही पेड़ पौधों को पहचाना और इधर उधर घूमते हुए मानव को स्थायी रूप से रहना सिखाया और सभ्यता का निर्माण हुआ। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि एक स्त्री परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को मानवीय मूल्य, नैतिकता और संस्कृति की परंपराएं सौंपती। माँ, बहन और जीवन साथी के रूप में महिला परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़कर रखती है और समाज को संतुलित बनाती है। नारी में वो शक्तिशाली ऊर्जा है जिसने घर को मंदिर बनाया, संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया और समाज की नैतिक धुरी को स्थिर रखा। हम अगर आज की भारतीय नारी की बात करें तो आज विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, कला और तकनीक हर क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वे अपने कार्यस्थल पर निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान नारी ने आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी सहज कर रखा है। नारी पुरातनता की गरिमा और आधुनिकता की क्षमता दोनों का सार एक साथ लेकर चल रही हैं। सखियों, चाहे घर हो, समाज हो या राष्ट्र हो, हमें अगर आपस में प्रेम और सामंजस्य रखना है तो उसके लिए एकजुटता जरूरी है और वो आती है आपसी संवाद, शांति और विश्वास से। इसलिए हम हर साल 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ताकि विश्व के लोगों के बीच आपसी प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। वे सभी एक साथ मिलकर खुशी के साथ रहें और साथ मिलकर इस गीत का आनंद लें।

0: सखियों, अभी आपने गीत का आनंद लिया, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार हैं अपाला स्वामी।
1: योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। यह एक ऐसी पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। योग भारत की प्राचीन परंपरा और विज्ञान का एक अनमोल उपहार है जिसको अपनाने से संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। योग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं एवं पुरुषों सभी के लिए उपयोगी है, पर महिलाओं के लिए योग का महत्व और भी अधिक है। महिलाओं का शरीर और जीवन चक्र पुरुषों से अलग होता है। वह अपने जीवन काल में किशोरावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व, मेनोपॉज जैसे कई चरणों से गुजरती है। इन सभी चरणों में भारी मात्रा में हार्मोनल बदलाव होते हैं। आधुनिक युग में महिलाएं ना केवल घर परिवार बल्कि अपने करियर में भी फोकस कर रही है, जिसके चलते उन पर काम का बोझ और बढ़ गया है। इस कारण से वह अक्सर अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे पाती। इससे उनमें अनेकों शारीरिक व मानसिक समस्याएं, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, PCOD, PCOS जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिसऑर्डर, मोटापा, तनाव जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में योग बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। योग विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। महिलाएं अक्सर घर व कार्यस्थल पर रोज एक ही तरह के काम बार बार करती है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना। इस कारण शरीर के कुछ हिस्से तो अधिक सक्रिय हो जाते हैं जबकि अन्य हिस्से कम सक्रिय रह जाते हैं। साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों की मांसपेशियों और जोड़ों में अधिक दबाव पड़ता है जिससे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं

उत्पन्न होती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं के लिए सजगता लाए। योगासन शरीर के सभी हिस्सों को समान रूप से सक्रियता व खिंचाव लाता है। इससे शरीर लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है, सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और तनाव को कम करने व संतुलन लाने में मदद मिलती है। एक महिला अपने जीवन के किसी भी चरण में योगाभ्यास की शुरुआत कर सकती है, यह हमेशा लाभकारी ही साबित होता है। पर बेहतर होता है अगर वह अपने किशोरावस्था से ही योग की शुरुआत कर दे। इस उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। यह ऐसा समय है जिसमें लड़कियां पहली बार हार्मोनल बदलाव को महसूस करती है। इस उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत होती है और अचानक से आए इस बदलाव को सहज रूप से लेना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे लड़कियों में कंफ्यूजन, इम्पेशेंस, कंसंट्रेशन में कमी, अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाने की परेशानियां सामने आती है। साथ ही बदलती जीवन शैली के कारण उनमें इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, PCOS जैसी समस्या काफी आम होने लग गई है। इन सभी कारणों से मानसिक तनाव, त्वचा समस्याएं, चेहरे पर अत्यधिक बालों का होना, ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी की दिक्कत आती है। ऐसे में नियमित रूप से योग का अभ्यास, जिसमें सूर्य नमस्कार, शीतलीकरण व्यायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन जैसे वृक्षासन, भुजंगासन, भद्रासन, बालासन, सभी मददगार होंगे। इनसे ध्यान केंद्रित करने में, मन को स्थिर व संतुलित करने में, मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। योग अभ्यास किशोर मन को स्थिरता और अनुशासन सिखाता है। युवावस्था में महिलाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है अपने करियर व पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। इस दौरान उनके सर पर काम का बोझ, समाज व परिवार की अपेक्षाओं का बोझ और जीवन के कई पहलुओं को लेकर असमंजस की स्थिति से तनाव बढ़ता है। नींद में भी बाधा आती है। निरंतर योग का अभ्यास आत्म जागरूकता व सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। यह उन्हें सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ऐसे सभी आसन जो पेल्विक एरिया और एब्डोमेन एरिया पर फोकस करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पेल्विक एरिया शरीर का वह हिस्सा है जो ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम के हिस्से को कवर करता है। इसलिए आसन जैसे वीरभद्रासन, भूनमनासन, मलासन, भद्रासन, हनुमानासन, इन सभी अंगों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं और फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। फिर जो एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चरण आता है वो है गर्भावस्था। इस दौरान वजन बढ़ना, पीठ दर्द, थकावट और मानसिक चिंता आम समस्याएं होती है। कुछ आसन जैसे कटिचक्रासन कमर व पीठ को आराम देते हैं। मलासन, बद्धकोण आसन, सुप्त बद्धकोण आसन गर्भाशय को मजबूत करता है और प्रसव को आसान बनाता है। इसके अलावा मर्जरी आसन, विपरीत करनी भी प्रसव को सहज बनाने व पीठ दर्द में काफी राहत देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम और सांसों में ध्यान मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस दौरान योग करने से डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को भी कम करने में मदद मिलती है। हालांकि गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह व योग गुरु के उचित मार्गदर्शन से ही योगाभ्यास करना चाहिए। इस दौरान सरल और सांस से संबंधित आसन करने चाहिए। पेट पर दबाव डालने वाले और अधिक खिंचाव वाले आसन नहीं करने चाहिए। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिनमें महिलाओं की ओवरीज धीरे धीरे एस्ट्रोजन का उत्पादन कम कर देते हैं और मासिक धर्म की प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। यह एक बड़ा बदलाव है जो महिलाओं में कई शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। इस दौरान थकान, अचानक गर्मी लगना व पसीने आना जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, मूड स्विंग्स, हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे समस्याएं होती है।
इस चरण में प्राणायाम

विशेषकर चंद्रभेदन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम हॉट फ्लैशेस से निजात दिला सकते हैं। इससे चिड़चिड़ापन कम होता है और शरीर में ताजगी और ठंडक का एहसास होता है। वृद्धावस्था में जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, तनाव, रक्तचाप आम है। हालांकि अगर कोई महिला अपने जीवन में पहले से ही योगाभ्यास करती आई है तो इन समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा। इस समय सरल आसन जैसे ताड़ासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, शवासन, भुजंगासन काफी लाभदायक होंगे। सभी आसनों को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा हल्का फुल्का पैदल चलना, सूक्ष्म व्यायाम के जरिए जोड़ों को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। ध्यान और प्राणायाम भी काफी लाभदायक है। वृद्धावस्था में योग महिलाओं के आध्यात्मिक विकास

0: रखनी चाहिए, जैसे योग करते समय सांस लेने की तकनीक, मुद्राएं और बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। गलत तकनीक से करने से नुकसान भी हो सकते हैं। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ और चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उपयुक्त योगासन और अभ्यास की सिफारिश कर सकते हैं। सभी आसनों को समय देकर आराम से एवं ध्यानपूर्वक करना चाहिए। योग करने के लिए सुबह का समय और स्वच्छ एवं शांत स्थान सबसे उपयुक्त होता है। इस समय पेट खाली होना चाहिए, आरामदायक लचीले और हवादार कपड़े पहनने चाहिए। इन कपड़ों से आपकी त्वचा सांस ले पाएगी और पसीना सूखेगी। इससे योग करते समय कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और एकाग्र रहने में मदद मिलेगी। योग का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए। संतुलित आहार, समय पर सोना जागना और सकारात्मक सोच जीवन में योग के प्रभाव को और अधिक गहरा बनाते हैं। तो आइए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, सुखमय और संतुलित जीवन का आनंद लें।
1: सखियों, अभी आपने वार्ता सुनी महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार थी अपाला स्वामी। उम्मीद है आपको ये वार्ता जरूर पसंद आई होगी। सखियों, अब हम चर्चा करेंगे पंक्चुअलिटी पर। आप सभी जानती हैं कि समय की पाबंदी एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिसे हमारे संस्कारों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। समय पर किसी काम या मीटिंग में पहुंचना सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जब हम समय पर पहुंचते हैं तो जाने अनजाने में हम सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सखियों, जो लोग समय के पाबंद होते हैं उन पर लोग आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं। डिसिप्लिन और समय प्रबंधन किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। अगर हम स्वयं इस बात पर अमल करते हैं तो हमें देखकर यही संस्कार हमारे बच्चों में भी आते हैं। हम हमेशा हर जगह समय पर पहुंचते हैं तो बच्चे भी समय की पाबंदी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों में समय से उठने, समय से खाने, समय से खेलने और सोने की आदत डालें, ताकि वो आदत उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बने। और सखियों, आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि एक चार्ट बनाकर उनके कमरे की दीवार पर लगा दें, ताकि उन्हें हर काम का समय याद रहे। छोटे बच्चों की सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए रात में ही बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, बैग तैयार करके रखवा दें। जब बच्चे बचपन से ही समय पर काम करने के आदि हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर काम करने पर उनकी प्रशंसा भी करें और छोटे छोटे पुरस्कार देकर उनका उत्साह भी बढ़ाएं, ताकि वो हर काम खुश होकर करें।

सखियों, गर्मी का मौसम है, ऐसे में हर जगह पानी की किल्लत होने लगती है। लेकिन हम दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पानी की हर एक बूंद को बचा सकते हैं। ये केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं, बल्कि भविष्य के जल संकट से बचने का प्रभावी कदम है। सखियों, ब्रश या मुंह धोते समय नल खुला ना छोड़ें, उपयोग के दौरान ही नल चलाएं। ऐसा करने से हर मिनट हम कई लीटर पानी बचा सकते हैं। नहाते समय शॉवर की जगह बाल्टी और मग का उपयोग करें, इससे पानी की खपत सीमित रहती है। फ्लश का उपयोग केवल ज़रूरत के अनुसार ही करें। घर में टपकते हुए नलों, पाइपों, फ्लश की मरम्मत तुरंत करवाएं। टपकने वाले नलों से सालाना कई लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तभी करें जब वे पूरी तरह से भरे हों। आरओ का वेस्ट पानी एक बाल्टी में इकट्ठा करें। इसका उपयोग पोछा लगाने, बर्तन धोने या पौधों में डालने के लिए करें। सब्जियों या फलों को धोने के बाद बचे हुए पानी को फेंकने के बजाय गमलों में डालें। अपने घर की छतों पर आने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए

ये अंडरग्राउंड टैंक या हार्वेस्टिंग सिस्टम में इकट्ठा करें। ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में अत्यधिक मददगार है। इस प्रकार सखियों, हम सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर जल संरक्षण में अपना सहयोग दे सकती हैं। सखियों, मन करता है कि हम आपसे और भी बातें करें, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। तो सखियों, आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सखी निरंजना को दे विदा लेने की अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये गारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना जाटव के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे स्मिता घांगरे करके गाए भजन।

0: स्मिता घांगरे करके गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

केके की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रईस फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं मनोज यादव ने और धुन बनाई है जैम 8 ने।

0: केके की आवाज़ में अभी आपने रईस फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन

0: जी रहे हैं।
1: हम सबका सौभाग्य है आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा, 25 करोड़ लोगों का मकान दे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर काम करता है वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और ITI मंडला द्वारा कल सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुरक्षा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज

0: 169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम वो हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े, आरती जोंदड़े की और सपना संगीता रोड इंदौर से ये गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हमें पत्र मिला है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये हमारे श्रोता हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और गोला बाजार बक्सर से इस गीत को पसंद किया है। बीना देवी आर्य, सबिता देवी आर्य, पूनम, पूजा, एस एन आर्य, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू, राजा बाजार चौक बिहिया खारा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी, बीना और प्रतिज्ञा केशरी आप सभी सुनना चाहते हैं। पारस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं ससुराल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन इस गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरिंगी से भागवत वर्मा ने। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गीत।

हंसते जख्म इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है कैफी आजमी ने। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ये हैं। और बत्ता परिवार के सदस्यों के नाम हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम मोहम्मद, राही, महराज जहां, ये हमारे श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और

डोंगरगांव से, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, ये हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजिये गजभिये। इसी के साथ इन्हीं के पत्र में हमारे जो अन्य नाम शामिल हैं वे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। रूपाली मालवीय, अर्चित मालवीय और सुमन मालवीय, ये हैं होशंगाबाद रोड भोपाल के हमारे श्रोता। और इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ ने, जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत जयदेव का है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की योगदान से है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर। क्षमा कीजिए, सांध्यकालीन सभा में रात 8:35 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सात बजकर 21 मिनट पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनवाया जाएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है तुम सही हो मार्गी। ये नाटक आप सुनेंगे रात

10 बजे जिसके लेखक हैं विमल कांत येंडे और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग पूर्या कल्याण। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और ओटीटी एफ वेव्स पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:50 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में सुनवाते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए लोकगीत।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोता सुने उनका नियमित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं अनुषा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं आज है बुधवार और आज के दिन जो हमारा खास सेगमेंट है वो है एक ही फिल्म से,
1: जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक की एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी फिल्म। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में।
0: और इसी के साथ आज कुछ खास दिन भी है जिसके बारे में हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आपके आज के कार्यक्रम के प्रश्न बता दें। तो श्रोताओं, आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखिए, कार्यक्रम के अंत में आप इनके उत्तर हमारे साथ मिलाइएगा।
0: बिल्कुल, और तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, आज हम मना रहे हैं सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, जो हर वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चीन के प्रस्ताव पर 2024 में इस दिवस को घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृतियों के बीच आपसी समझ, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देना है।
1: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच पूर्वाग्रहों को दूर करना, शांति की स्थापना करना और वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचारधाराओं को वैश्विक स्तर पर समर्थन देना है।
0: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2025 को मनाया गया था।
1: इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क और जेनेवा स्थित कार्यालयों में विशेष संवाद, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं।
0: और एक ऐसी दुनिया जिसमें मतभेद अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि संवाद ही शांति का रास्ता है। अनुभूति, ये तो बहुत ही वैश्विक स्तर की बात हो गई। अभी अगर हम हमारे घर से कहीं दूर, थोड़ी ही दूर पर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही कई बार हमें ऐसी विवादास्पद स्थितियां दिख जाती है जहाँ पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ही कर रहे होते हैं, छोटी सी बात पर किसी ने किसी को टक्कर मार दिया कुछ। तो ऐसे मतभेद हमें आम जिंदगी में यही दिख जाते हैं, तो ये तो वैश्विक स्तर की बात है। नहीं,
1: बिल्कुल, लेकिन हमारी दुनिया हजारों साल पुरानी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता भी है अनुषा। लेकिन कभी कभी जानकारी की कमी या अज्ञानता के कारण गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सही, और इसी दूरी को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यह पहल शुरू की है। सभ्यताओं के बीच संवाद का मतलब है एक दूसरे की कहानियों को सुनना, कला, संगीत और विचारों का आदान प्रदान करना।
1: ठीक वैसे ही जैसे सदियों से प्राचीन सिल्क रोड से लेकर आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया तक ज्ञान और तकनीकों के आदान प्रदान ने ही मानव सभ्यता को समृद्ध किया है, क्योंकि हर सभ्यता मानव जाति की सामूहिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और आज के दिन हमें नफरत का जवाब इंसानियत से देने का संकल्प लेना चाहिए। हमें विभाजन की जगह एकजुटता, एकता और समझ को चुनना चाहिए।
0: बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, क्यों ना आज हम भी अपने आसपास किसी ऐसी संस्कृति या विचार के व्यक्ति से बात करें जो हमसे अलग हो, या हम उन लोगों से चर्चा करें और कुछ आपस में साझा करें, अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलें और संवाद को विभाजन पर जीत दिलाएं।
1: इसी सकारात्मक संदेश के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो दोस्तों, जैसा हमने आपसे कहा था कि आज है बुधवार का दिन और आज है दिन एक ही फिल्म से का, जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं एक 90 के दशक की फिल्म। जब हम बात करते हैं इन उस समय के फिल्मों की, तो हम ये देखते हैं अनुभूति कि कई लंबे समय से फिल्म्स बनती आ रही है, लेकिन इस खास तौर पर जब 90 के दशक की फिल्मों की बात होती है, तो ये फिल्म प्रेम, परिवार, दुश्मनी, रिश्ते, इन सभी के साथ साथ अपने आप में कॉमेडी का भी एक अलग ही रंग रखती है।
1: और 90 के दशक की एक ऐसी ही फिल्म आज हम हमारे साथियों से साझा करने वाले हैं अनुषा, जिसने दर्शकों को हंसाया भी, रुलाया भी और प्रेम की मासूमियत का एहसास भी कराया, और ये फिल्म है राजा बाबू।
0: दोस्तों, 90 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का दौर था और बड़े बड़े एक्शन सितारे पर्दे पर छाए हुए थे, तो दूसरी ओर दर्शक ऐसी फिल्मों की तलाश में थे जो पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सके।
1: इसी दौर में निर्देशक डेविड धवन ने कॉमेडी को नई पहचान दी और गोविंदा के साथ मिलकर मनोरंजन की एक ऐसी दुनिया बनाई जिसे आज भी लोग याद करते हैं और आज भी लोग जिन फिल्मों के दीवाने हैं।
0: बिल्कुल, राजा बाबू केवल एक कॉमेडी फिल्म नहीं थी, ये गांव और शहर, सादगी और आधुनिकता, शिक्षा और संस्कारों के बीच के अंतर को एक एंटरटेनमेंट वाले वे में, यानी कि मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने वाली एक बढ़िया सी कहानी थी।
1: तो फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां रहता है राजा। धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। राजा बाबू का किरदार बहुत ही रोचक बताया गया है इस फिल्म में।
0: बिल्कुल, उसका पहनावा, बोलने का अंदाज और आत्मविश्वास इन्हें सबसे अलग बनाता है, और इस किरदार को अपने अंदाज से अपना बना लेते हैं गोविंदा। इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दिल का बेहद साफ इंसान है, गलतियां करता है लेकिन किसी से छल नहीं करता।
1: एक दिन फोटो स्टूडियो में उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में होती है मधु। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक साधारण सा स्टूडियो, दीवार पर टंगी तस्वीर, और उसे देखते ही राजा बाबू की आंखों में आई वो चमक। हाँ, वही जो उस सफर में या उस दौर की फिल्मों में पहली बार किसी के पसंद आने को दर्शाया करता था।
0: अब सोचने की बात है अनुभूति, उस दौर में मोबाइल फोन तो था नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक तस्वीर देखकर प्रेम हो जाना दर्शकों को बेहद रोमांटिक लगता था। फिल्म के निर्माता चाहते थे कि कहानी में हास्य के साथ पारिवारिक भारतीय जो मूल्य है उनकी भी झलक बनी रहे, और यही वजह है कि फिल्म का हास्य कभी भी पात्रों की भावनाओं पर भारी नहीं पड़ता है।
1: फिल्म में कादर खान ने किशन सिंह का किरदार निभाया है, एक ऐसे पिता जो अपने बेटे की हर कमी को अपने प्यार से ढक देते हैं। उनके संवाद और अभिनय फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बनते हैं।
0: और इन सभी किरदारों के साथ आता है एक किरदार जिसका नाम है नंदू। नहीं अनुभूति, नंदू नहीं, नंदू। मुझे लगता है कि

तो साथियों, हम बात कर रहे थे फिल्म राजा बाबू की कहानी की। तो जैसा कि हमने बताया कि राजा बाबू एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे माता पिता से बेहद प्यार मिला, उनके साथ देते हुए और उनके साथ उनका साथ दिया, उनके दोस्त

0: नंदु ने। अब मिलते हैं फिल्म की नायिका मधु से। मधु का किरदार निभाया है अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने।
1: दोस्तों, 90 के दशक में करिश्मा कपूर धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो रही थी और राजा बाबू ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया।
0: मधु एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मविश्वासी युवती है। वो जीवन में केवल प्रेम नहीं बल्कि समझदारी और व्यक्तित्व को भी महत्व देती है। जब राजा बाबू उससे मिलने शहर पहुंचता है, बस तब से शुरू होता है हास्य और साथ ही गलत फहमियों का सिलसिला।
1: और फिल्म का बेहद दिलचस्प मोड़ ये है कि राजा बाबू अपने प्यार को पाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। वो अपने व्यवहार में भी कई सारे बदलाव लाने के प्रयास करते हैं।
0: लेकिन क्या केवल बाहरी बदलाव काफी होता है? और यही सवाल फिल्म धीरे धीरे दर्शकों के सामने रखती है कई सारे किस्सों और बातों के माध्यम से।
1: और इसी के साथ एक दृश्य ऐसा भी आता है जब मधु को सच्चाई का पता चल जाता है और उसे महसूस होता है कि जिस व्यक्ति को वो समझ रही थी वो वास्तव में वैसा नहीं है। और जब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी तब करिश्मा कपूर को सच्चाई का पता चलता है और वो शादी से इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं एक अनपढ़ लड़के से शादी नहीं कर सकती।
0: उस दृश्य में गोविंदा का अभिनय अनुषा विशेष रूप से सराहनीय है और हमारे जो श्रोता ये कहानी सुन रहे हैं उन्हें भी यही लगता होगा। पहली बार दर्शक राजा बाबू के हास्य से आगे बढ़कर उसके दर्द और दुख को महसूस जो करते हैं।
1: बिल्कुल, और उनके साथ साथ इस दर्द को बांटा उनके दोस्त नंदू ने। यदि राजा बाबू फिल्म का दिल है तो नंदू उसकी धड़कन है। जो हम कॉमेडी और सारे पूरे दृश्य की बात कर रहे हैं तो नंदू जो है एक दोस्त के नाते कई बार राजा बाबू की मदद करने की कोशिश करता है। नंदू अपने दोस्त की मदद तो कर रहा है लेकिन उसकी हर सलाह एक नई मुसीबत के रूप में खड़ी हो जाती है।
0: शक्ति कपूर के इस किरदार को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उन्हें इस भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तक मिला। खैर, फिल्म आगे बढ़ती है और राजा बाबू अपनी मधु को मनाने में जुट जाते हैं जो फिल्म का अहम हिस्सा होता है।

0: तो अभी तक हमने जाना कि कैसे राजा बाबू के कम पढ़े लिखे होने पर मधु ये रिश्ता ठुकरा देती है, लेकिन अब यहाँ पर फिल्म एक पूरा पूरा मोड़ ले लेती है। फिल्म की शुरुआत में जहाँ मधु राजा बाबू की सादगी और पढ़ा लिखा ना होने को स्वीकार नहीं कर पाती, वहीं समय के साथ उसे ये एहसास होता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावा या डिग्री से नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और उसके दिल से होता है।
1: जब मधु को राजा बाबू की अच्छाई, सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसके त्याग का एहसास होता है, तो वो स्वयं राजा बाबू से शादी करना चाहती है। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ ले लेती है। इस बार स्थिति बिल्कुल पलट जाती है।
0: अब राजा बाबू के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि उनके बेटे का अपमान हुआ था और उसके प्यार को ठुकराया गया था। तब उस दर्द को भूलना इतना आसान तो नहीं है।
1: फिल्म का ये हिस्सा दर्शकों को ये संदेश देता है कि रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास भी उतना ही आवश्यक होता है। कहानी आगे बढ़ती है और कई भावनात्मक घटनाओं के बाद सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। परिवारों को भी ये समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं।
0: बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। राजा बाबू और मधु का मिलन होता है और परिवार उनकी शादी के लिए राजी हो जाता है।
1: राजा बाबू की सफलता ने ये साबित कर दिया कि दर्शक केवल बड़े सेट और भव्य एक्शन से नहीं बल्कि सच्चे मनोरंजन और दिल को छू लेने वाली कहानियां भी उस समय से लेकर आज तक पसंद करते आ रहे हैं।
0: बिल्कुल सही अनुभूति। आज रिलीज के 3 दशक के बाद भी ये फिल्म टीवी चैनल हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह उतनी ही पसंद की जाती है। जब भी 90 के दशक की सबसे यादगार कॉमेडी फिल्मों की बात होती है तो मुझे लगता है कि राजा बाबू का जो नाम है वो उसमें ज़रूर लिया जाता होगा।
1: बिल्कुल, और शायद यही किसी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है कि समय बदल जाए, दौर बदल जाए, पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन फिल्म लोगों के दिलों में हमेशा इसी तरह बनी रहती है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की फिल्म राजा बाबू। इस फिल्म से जुड़ी और कौन सी बातें आप जानते हैं हम आपको सुनना चाहेंगे, आप याद कीजिए। तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, आज के सेगमेंट एक ही फिल्म से में हमने आज चर्चा की फिल्म राजा बाबू पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और साथ ही आप और कौन सी फिल्मों पर चर्चाएं सुनना चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब साथ ही हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जिसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए।
1: और दूसरा प्रश्न था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, जिसका उत्तर है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड राष्ट्र में। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्नों के उत्तर। अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति
0: और अनुषा को।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म सुई धागा का ये गीत। रोकिनी गुप्ता की आवाज़ में इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने, संगीतबद्ध अनु मलिक ने किया।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में ये बहुत खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दम लगा के हाइशा से। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत अनु मलिक का है।

फिल्म संगीत का अंतिम नगमा हमने लिया है फिल्म ताल से, हरिहरन और सुखविंदर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत AR रहमान का है।

फिल्म ताल के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
2: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: यार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए ये

0: इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह। और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीही के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शाम के 6:30 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज की कलाकार है स्वाति नाटेकर। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गज़ल।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, एक सूचना है, इस गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है रक्तदान, महादान, फायदे और भ्रांतियां। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। दिन गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रश्न पूछने के लिए वाले हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224 और इंदौर का स्टडी कोड है 0731। फ़ोन करना ना भूलें गुरुवार 11 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती के इंदौर के चैनल FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब रुख करते हैं कार्यक्रम की ओर। सुनवाते हैं स्वाति नटकेरीकर का आवाज़ में ये गज़ल।

अभी आपने स्वाति नाटेकर की आवाज़ में ये गज़ल सुनी और इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। समय है लोक संगीत का। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं नारायण लाल सिसोदिया और साथी। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये मालवी लोकगीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए

0: कि निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर 648 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग विषय पर जानकारी श्रीमती उषा खेड़े से। रात्रि 8:00 सुनेगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात 9:16 पर कार्यक्रम चित्रगीत सुनेंगे, जिसमें आप सुनेंगे सदाबहार पुराने फिल्मी गीत रूपक हे अवंतिके हे अवंतिके, आप सुन सकेंगे रात 10:00। शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 सुनेगा पंडित जसराज का गाया राग मारवा। ये तो थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना से 6:05 पर। चिंतन करेंगे 6:30 आलेख आदित्य कुमार सोनी का होगा। खेती की बातें होंगी 6:35 पर। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय होगा 6:40। कल 7:20 पर ज्ञान दर्शन में खुशबू साहू की वार्ता होगी ऋग्वेदादि भाषाई भूमिका। सुनहरे पल कार्यक्रम में सदाबहार पुराने फिल्मी गीत सुनेंगे 7:35 पर। लोक संगीत में सुनेगा हेमलता उपाध्याय और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत 9:00 और 6:45 पर। सुगम संगीत में 9:15 सुनेंगे प्रभंजय चतुर्वेदी को और 6:30 शीला वर्मा की आवाज में कुछ गीत होंगे। शास्त्रीय संगीत होगा 9:30, जिसमें आप सुनेंगे उस्ताद राशिद खां का गाया राग देश।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर। दोपहर 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में सुनिएगा मीना गोदरे से कहानी विदोह। रूप लावण्य क्रम में सुने बढ़ते तापमान में कैसे करें आंखों की देखभाल और सुरक्षा। फैमिली फिटनेस में जाने कैसे चुने सही फूड प्रोडक्ट के बारे में। क्रम आपकी सुरक्षा आपके हाथ में आप जानेंगे हैकर की नजर रिमोट एक्सेस डेटा पर। सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 12 बजे फिल्म संगीत, 12:30 बजे संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 बजे चित्रपट संगीत होगा। सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी कल शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी से। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप 5:45 पर और रात 9:16 पर चित्र गीत कार्यक्रम में। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा रात 8 बजे। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 9:30 और शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 पंडित C.R. व्यास का गाया राग मालव होगा। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की 3 सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों, मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के GI टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाला ये हमारे सभी बहन नखा न कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी भाई नखा भी अनुराधा की राम राम। हमारी बहन जी छे खेती बाड़ी का काम करज नौका में बहुत अच्छा तरीका से जी हाथ बटावज काम न पर खेती बाड़ी का काम न का साथ कभी आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए हमारी बहन सशक्त हो जाए तो की बात अज अलग छे। देखो एक आज हम ऐसी योजना का बारे में आपको बताने वाली छे जिकी थोड़ी सी तकनीकी ओकामा जानकारी होनु आवश्यक छे। ये योजना छे नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना मतलब देखो आपको ड्रोन उड़ाणु पड़ेगा नाम अच्छे ओको ड्रोन दीदी। तो नमो ड्रोन दीदी योजना जी छे भारत सरकार की विशेष योजना छे जिकी ग्रामीण महिला न कल्याण न विशेष रूप से जी महिला ना स्वयं सहायता समूह में सम्मिलित छे उनका लेने ये योजना छे। आम अपन देखी रहा है कि कृषि में जी छे आधुनिक तकनीक न को उपयोग बहुत ज़्यादा हुई रोज तो हमारी बहन नखा भी आम वो तकनीक नखा सीखनू तो पड़ेगा पर इन्हीं तकनीक का सीखी न आप आर्थिक रूप से मजबूत हुई जाओगे तो ओकासी काई होएगा कि जैसा अपना अपन खेत में देखी रहा कि आम उर्वरक नाखनूज या कीटनाशक न को छिड़काव करनूज तो वो ड्रोन का माध्यम से भी हुई रोज और न कभी आपने ड्रोन का उड़ाणु प्रशिक्षण ले लियो तो आप नमो ड्रोन दीदी योजना में सम्मिलित हो जाओगे। आम जी महिला ना ड्रोन दीदी योजना में सम्मिलित हुई रही उनको क्षेत्र ड्रोन पायलट का रूप में उनका प्रशिक्षण हो उनका आत्मनिर्भर बनावना का लेना ये बहुत आवश्यक छे। यदि वो बहन आत्मनिर्भर हुई गई तो अपन ये समझी सकें कि वो बहन जी छे किराया पर ड्रोन ले सकज या फिर या स्वयं सहायता समूह का माध्यम से खरीदना की या विचार हो तो योजना का तहत ड्रोन की लागत को 80% या अपन कहाँ कि अधिकतम 8 लाख रुपया तक को अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से मिली जाएगा न जी बचल शेष लागत छे ओका पूरा करना का लेना महिला स्वयं सहायता समूह का माध्यम से कृषि और संरचना कोष से रियायती दर न पर खाली 3% ब्याज पर लोन भी प्राप्त कर सकज पर सबसे आवश्यक जी बात छे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होनु। ड्रोन उड़ावना का लेना प्रशिक्षण बहुत आवश्यक छे। आपको एक परीक्षा होएगा उन्हीं परीक्षा में जी बैठना चयनित हो जाए नी चयनित बैठना का चयनित समूह की महिला नखा 10 से 15 दिन को विशेष तकनीकी शब्द एका लेना जोड़ी रही क्योंकि उड़ान जी छे वो थोड़ा सो अलग काम छे ड्रोन का उड़ाणु तो ड्रोन उड़ावना को जो तकनीकी प्रशिक्षण छे वो उनका देगा। 15 दिन का प्रशिक्षण का बाद हमारी बहन नखा रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिली जाएगा। रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिलने का बाद उनकी कमाई का अवसर शुरू हो जाए। ये नमो ड्रोन योजना का तहत जी बहन अलग अलग तरीका की लोग नखा खेत न जाए ना भाई बहुत सारा ऐसा किसान छे जी

0: अपना खेत में चाहिए रहा कि हमारा खेत में ड्रोन का माध्यम से उर्वरक न कीटनाशक न को छिड़काव हो। तो हमारी जिनी बहन ने ना प्रशिक्षण ले लियो, वो उनका खेत पर जाइना ना किराया का उर्वरक न को छिड़काव करी सके। तो अपन ये समझाएं कि कमाई बहुत अच्छी छे, मतलब 1 लाख तक का सालाना कमाई हमारी बहन ना जी उनको समय रहने खेती में उर्वरक नाखने को या फिर कीटनाशक को छिड़काव करने को, उना समय तो हमारी बहन ने इतनी व्यस्त हो जाएगा कि उनका समय नहीं मिलने को, अपना घर का काम में भी परेशानी आई सके। तो कमाई भी अच्छी हो जाएगा, 1 लाख रुपया तक की सालाना कमाई की योजना इन्हें उकाम छे। पर सबसे बड़ी बात कि तकनीकी प्रशिक्षण बहुत आवश्यक छे। तो जी भी बहन ने थोड़ी सी भी रुचि रखती हो नमो ड्रोन दीदी योजना की पूरी जानकारी ले ले, न उनका आधिकारिक पोर्टल का अलावा कहीं से भी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं हुई। आधिकारिक पोर्टल पर जाओ, वहाँ से पूरी जानकारी लो, न फिर उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करी ना अपना घर का अपनी आर्थिक स्थिति का मजबूत करो। तो ये तो थी नमो ड्रोन दीदी योजना का बारे में जानकारी। भाई नोनी अपन एक जैसा कवानी कि आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत आवश्यक है। तो आर्थिक रूप से सक्षम अपन न करी सकाज लघु न कुटीर उद्योग। तो आज अपन ये सुनाज एक वार्ता उषा खेड़े सी लघु न कुटीर उद्योग का बारे में जानकारी।
1: किसान भाइयों और बहनों को उषा खेड़े का नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के बारे में। किसान भाइयों, जब एक पुरुष शिक्षित और तो केवल एक व्यक्ति का विकास होता है, लेकिन जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी सशक्त होती है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ वहाँ की महिलाएं हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठने से लेकर देर रात तक घर के चूल्हे चौके और बच्चों की परवरिश, खेतों में बुआई कटाई और मवेशियों की देखभाल करने तक ग्रामीण महिलाओं का पूरा जीवन कड़े परिश्रम से भरा होता है। इसके बावजूद पारंपरिक रूप से उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं माना जाता, क्योंकि उनके इस अथक श्रम का कोई सीधा नगद मूल्य नहीं आता जाता। आज के बदलते भारत में ग्रामीण महिलाओं को केवल घर की चार दीवारों या खेतों की मजदूरी तक सीमित रखना देश के समग्र विकास को रोकना है। यदि ग्रामीण महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी प्रतिभा और हुनर को निखारने का अवसर मिले तो वे न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, बल्कि अपने परिवार को गरीबी के जाल से बाहर निकाल सकती है। कुटीर और लघु उद्योग ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि इन्हें शुरू करने के लिए न तो बहुत बड़ी पूंजी पैसों की आवश्यकता होती है, न किसी ऊंची डिग्री की, और न ही घर बार छोड़कर किसी बड़े शहर में जाने की। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी ग्रामीण माताएं और बहनें इन उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि का नया इतिहास लिख सकती हैं। विषय को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लघु और कुटीर उद्योग वास्तव में क्या होते हैं। बात करते हैं कुटीर उद्योग की, तो यह वह उद्योग है जो पूरी तरह से घर से संचालित होता है। इसमें परिवार के सदस्य ही मजदूर के रूप में काम करते हैं। इसके लिए किसी भी भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हाथ के हुनर और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे पापड़, अचार बनाना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथों से बुनाई करना आदि। लघु उद्योग यह कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा रूप होता है। इसमें छोटी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, निवेश थोड़ा अधिक होता है और घर के सदस्यों के अलावा बाहर के कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा जा सकता है, जैसे सिलाई यूनिट, छोटी आटा या तेल मिल, मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का छोटा कारखाना आदि। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये उद्योग क्यों सबसे उपयुक्त है? ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी कुछ सामाजिक सीमाएं होती है। लघु और कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए सबसे उत्तम विकल्प साबित होते हैं, जिसके मुख्य कारण कम पूंजी की आवश्यकता, ग्रामीण परिवारों के पैसा निवेश के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं हो।

होता है। ये उद्योग बहुत कम लागत और कुछ हजारों रुपयों से शुरू किया जा सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर घर और बच्चों की जिम्मेदारियां होती है। इन उद्योगों को की सबसे बड़ी खूबी यह है कि महिलाएं घर का काम निपटाने के बाद अपनी खाली समय में, जैसे दोपहर या शाम को, यह काम आसानी से कर सकती हैं। घर से ही संचालन कई पारिवारिक ग्रामीण समाज में महिलाओं को नौकरी के लिए घर से बाहर जाना, दूसरे शहरों में रहने की अनुमति नहीं होती है। कुटीर उद्योग उन्हें अपने घर के सुरक्षित माहौल में रहकर सामान्य पूर्वक कमाने का अवसर देते हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, इसके लिए कच्चा माल बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। गांव में उपलब्ध चीजें जैसे दूध, फल, सब्जियां, अनाज, बांस, मिट्टी, गोबर आदि इनके मुख्य स्रोत बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाओं का भंडार है। महिलाएं अपनी रुचि और कौशल और क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर किसी भी उद्योग को चुन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य उद्योग के बारे में। यह सबसे सफल और कभी न बंद होने वाला क्षेत्र है, क्योंकि भोजन की मांग हमेशा रहती है। गांव में आम, नींबू, मिर्ची और सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। पारंपरिक तरीके से बने शुद्ध घरेलू अचार और पापड़ की शहरों में बहुत भारी मांग है। शुद्ध हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसालों को कूट कर और पीस कर छोटे पैकेट बनाकर बेचना एक बेहतरीन व्यवसाय है। टमाटर, अमरूद, आंवला जैसे फलों से जैम और मुरब्बा तैयार करना। अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प और कलाकृतियों के बारे में। भारत के हर गांव की अपनी एक अनूठी कला संस्कृति होती है, जैसे कि बांस से सुंदर टोकरियाँ, चटाइयाँ, पंखे, कुर्सियाँ और सजावटी सामान बनाना, जूट से थैले और पैरदान बनाना, दीपावली के समय मिट्टी के कलात्मक दिए और गमले, और गर्मियों के लिए मटके बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्थानीय लोक कलाओं जैसे मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से कपड़ों और चादरों को सजाना। अब हम बात करते हैं कृषि और पशुपालन आधारित उद्योग के बारे में। खेती से जुड़े व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे सहज है, जैसे डेयरी और दूध उत्पादन, यानी दूध बेचने के अलावा खोया, मावा, पनीर, घी, मिठाइयाँ बनाना। मशरूम की खेती करना, इसके लिए किसी बड़े खेत की ज़रूरत नहीं होती है। घर के ही एक अंधेरे और नम कमरे में बहुत कम लागत से मशरूम उगाया जा सकते हैं, जिसके बाजार में अच्छी कीमत लगती है। मधुमक्खियाँ पालन की बात करें तो खेतों के किनारे मधुमक्खियों के बक्से रख कर शुद्ध शहद का उत्पादन करना। जैविक खाद बनाकर, यानी केचुए और गोबर की मदद से उत्तम दर्जे का खाद तैयार करना, जिसकी मांग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत बढ़ गई है। किसान भाइयों, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और मोमबत्ती निर्माण। यह काम बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और इसके लिए छोटी सी मशीन या सांचे की जरूरत होती है। दूसरा, दोना पातल बनाना। गांव में मिलने वाले महुआ या पलाश के पत्तों से अथवा कागज के दोना पातल बनाने का उद्योग शुरू कर सकते हैं। साबुन और डिटर्जेंट बनाना, जैसे घरेलू स्तर पर कपड़े धोने का साबुन या पाउडर बनाना बना सकते हैं। हालांकि यह रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन चलने में ग्रामीण महिलाओं को कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पूंजी की समस्या। ग्रामीण महिलाओं के नाम पर आमतौर पर कोई जमीन या संपत्ति नहीं होती है, इसलिए बैंक से लोन लेते समय उन्हें गारंटी देने में कठिनाइयाँ होती है। तकनीकी ज्ञान और शिक्षा का अभाव की बात करें तो आधुनिक मशीनों को चलाने के हिसाब किताब रखने और पैकेजिंग करने की सही जानकारी न होना आपको परेशान कर सकता है। तीसरा, बाजार तक पहुंच की कमी। महिलाएं उत्पाद तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें शहरों में बड़े बाजारों या सही खरीदारों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी समझ न होने इसके कारण बिचौलिया उनका मुनाफा खा आ जाते हैं। सामाजिक और पारिवारिक रूढ़िवादिता कई बार परिवार के सदस्य महिलाओं के व्यापार करने के विचार का समर्थन नहीं कर

0: करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चुनौतियों से कैसे निपटे। इन बाधाओं को पार करना नामुमकिन नहीं। सही रणनीति अपनाकर ग्रामीण महिलाएं एक सफल उद्यमी बन सकती है। जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन, अकेली महिला के लिए लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब गांव की 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बना लेती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बचत और ऋण की बात करें तो समूह की महिलाएं हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा करती है। जरूरत पड़ने पर कई भी सदस्य बहुत कम ब्याज पर समूह से ही पैसे ले सकती हैं। बैंकों के लिए भी किसी भी अकेली महिला के मुकाबले एक पंजीकृत स्वयं सहायता समूह को लोन देना बहुत आसान और सुरक्षित होता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। जैसे मुद्रा योजना, जिसमें बिना किसी गारंटी के लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 से 1 लाखों रुपये तक का लोन मिलता है। बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, जिसमें वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराना शामिल है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नया उद्योग लगाने के लिए भारी सब्सिडी छूट के साथ लोन मिलता है। इसके अलावा नाबार्ड की योजनाएं हैं, जिनमें कृषि आजीविका और ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण और फंड देना शामिल है। अब बात करते हैं कौशल विकास और प्रशिक्षण की। बहनों, बिना सीखे कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को सरकार के कौशल विकास केंद्रों या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुधारें, आकर्षक पैकेजिंग कैसे करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना, आज इंटरनेट गांव गांव पहुंच चुका है। ग्रामीण महिलाएं अपने स्मार्टफोन का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। अब अपने बनाए उत्पादों जैसे जैसे साड़ियाँ, अचार के डिब्बे की तस्वीरें खींचकर और इंटरनेट पर शेयर करें, ताकि आसपास के कस्बों से सीधे ऑर्डर मिल सके। सरकार का पोर्टल और अन्य प्राइवेट वेबसाइट आप सीधे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को देश विदेश में बेचने की सुविधा दे रही है। महिलाएं आत्मनिर्भरता के दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब एक ग्रामीण महिला लघु या कुटीर उद्योग के माध्यम से कमाने लगती है, समाज में क्रांति आती है, परिवार के जीवन स्तर में सुधार आता है। महिलाएं की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों की अच्छी शिक्षा, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य पर खर्चा होता है। इससे कुपोषण खत्म होता है और आने वाली पीढ़ी शिक्षित बनती है। जब महिलाएं घर की आय में योगदान देती है तो परिवार और समाज में उसकी बात सुनी जाती है। घरेलू हिंसा में कमी आती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। गांव का पैसा गांव में ही रहता है। जब स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा। ऐसी ही एक सफलता की एक सच्ची मिसाल की जानकारी देती हूँ। सन 1959 में मुंबई की साधारण महिलाओं ने मात्र 80 रुपये उधार लेकर घर की छत पर पापड़ बनाने का एक छोटा सा कुटीर उद्योग शुरू किया। आज वही उद्योग देश का सबसे बड़ा महिला सरकारी संस्थान है, जिससे 45,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और इसका टन ओवर करोड़ों में है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि महिलाओं का छोटा सा कुटीर उद्योग दुनिया बदल सकता है। बहनों, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता केवल दया या सहानुभूति का विषय नहीं है, बल्कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति की सबसे पहली शर्त है। लघु और कुटीर उद्योग वह सेतु है है जो एक साधारण ग्रामीण महिलाओं को एक स्वाभिमानी और सफल व्यवसायी बना सकते हैं। इस सपने को सच करने के लिए समाज की सोच में बदलाव, पुरुषों का सहयोग, सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और सबसे बढ़कर स्वयं महिलाओं के भीतर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब ग्रामीण महिलाओं के हाथ में हुनर होगा और दिल में हौसला होगा, तो भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा और तभी हमारा देश सही मायनों में सशक्त भारत कहलाएगा। नमस्कार।
1: अभी अपन सुनी रहा था वार्ता लघु एवं कुटीर उद्योग, वार्ताकार थी उषा खेड़े। इतनी अच्छी जानकारी का लेना अपन इनका धन्यवाद देवाज न भाई बहनों ने। मारा हाथ में कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव आएगा। पहला अपन ओका बारे में बात कर लेवा। आज गेहूं था 2,200 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव पर न अधिकतम भाव 2,831 रुपया। सोयाबीन की बात करें तो 4,200 रुपया न्यूनतम भाव से शुरू हुआ था, 7,660 रुपया अधिकतम भाव प्रति क्विंटल का हिसाब से भी किया। एक मॉडल भाव था 6,700 रुपया प्रति क्विंटल। देसी चना 4,200 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से न्यूनतम भाव से शुरू हुआ था ना अधिकतम भाव 7,265 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से भी किया। वहाँ जो मॉडल भाव था 5,655 रुपया। डॉलर चना 6,000 रुपया न्यूनतम भाव का साथ शुरू हुआ था, 9,115 रुपया अधिकतम भाव प्रति क्विंटल को रहो। वहाँ जो मॉडल भाव रहो 7,400 रुपया। मक्का की बात करें तो मक्का 1,600 रुपया से शुरू हुई थी, 2,150 रुपया पर बंद हुई अधिकतम भाव का साथ, 2,150 रुपया जो मॉडल भाव भी रहो। सरसों आज 4,800 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव का साथ शुरू हुई, 6,500 रुपया अधिकतम भाव पर बिकी। मूंग 3,300 रुपया प्रति क्विंटल को भाव थो न्यूनतम, न 7,725 रुपया प्रति क्विंटल को भाव थो अधिकतम, न साथ में 7,280 रुपया मॉडल भाव रहे। उड़द की बात करें तो उड़द 3,805 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से आज न्यूनतम भाव पर बिकी थी, न को अधिकतम भाव रहो 7,400 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। भाई बहनों ने कार्यक्रम में अमा सुनांगा स्वाति उखले ने उनका साथी नको गायल ये गजानन गीत।

अभी अपन सुन ही रहा था स्वाति उखले ने उनकी मंडली को गाया ये गजानन गीत, आनंद भी आयो। बहनों ने देखो अभी अपना घर में लगभग अपन देख ही रहा है कि हर दूसरा तीसरा दिन आम को रस बनी जाए। हमारा बच्चा ने कहा खूब अच्छो भी लगे, आम काटी ना झट मिक्सर में घुमायो, थोड़ा सो दूध मिलायो, ना शक्कर मिलाई ना बस स्वाद बढ़ी जाए। पर खरबूजा जी अपन खाई रहा नहीं ना समय ये आवाज अच्छा फल आई राज, ओकर रस भी बहुत अच्छो लगज। पर कभी कभी का ही लगज कि घर का जी पुराना बड़ा बूढ़ा लोग रहनी उनका खरबूजा का रस अच्छो लगज, पर आजकल का नया बच्चा जी छे वो थोड़ा सा उसका खाना में नाटक नौटंकी करज। तो हमारी बहन ने कभी उसको अच्छा तरीका से बनाई दे, उसको स्वाद बढ़ाई दे तो वो बच्चा भी हमारा खाई लेगा। देखो खरबूजा को रस बनाऊँ सबसे आसान छे, ओका में कहीं काटने में भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर असो फल छे कि गर्मी में इतनी ठंडक दे ना शरीर का बहुत ताजगी मिली जाए। आप एक कटोरी रस पी लियोगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा पेट भी भरेगा ना अंदर एकदम कोठा में ठकर नहीं कि ठंडक हुई जाए। कर्नूज का ही अच्छो एक पको जो भी आप जो भी आकार को ले रहा हो पकेल खरबूजो ले जो थोड़ा सो थोड़ी सी नरमी के तरफ रहे ऐसो ओखा अच्छा धोई ना छिलका उतार लियो ना दूसरी तरह से बनाऊ। देखो अपना बच्चा ने कर लेना बनाऊ हो तो ओका में दूध मिला दीजो न कभी अपना घर का बड़ा बुजुर्ग खाए तो उनका तो पानी के साथ भी अच्छा लगी जाए तो अच्छा धोई लेना ना उसको छिलका निकाल लेनू ना उसके बाद छोटा छोटा उसकी फाँक ना लंबी लंबी काटी लो उसका छिलका ओहेड़ी ना फिर उसका में टुकड़ा काटी ना मिक्सर में घुमाई लो। मिक्सर में डालता समय शक्कर नाखी दो बच्चा ना का थोड़ी सी शक्कर की मिठास अच्छी लगे, ठंडक हो तो फिर और अच्छी बात है ठंडो पानी नाखी दो या बर्फ का एक दो टुकड़ा नाखी दो। पर बच्चा ना का लेना बनाई रहा हो अपना ही तो ओका में दूध नाखनु बहुत आवश्यक छे, दूध से स्वाद एकदम बढ़ी जाएगा न साथ में बनना का बाद ओका में इलायची को पाउडर न कभी कभी अपन देखा नहीं कि दूध को मसाला का बाजार में पैकेट मिल रहा है वो ले आओ ओखा भी नाखी देगा तो ओका से भी स्वाद बढ़ी जाएगा। पर घर का बड़ा लोग जी छे उनका रज कि भाई हमका मुंडा में अच्छा थोड़ा ओका टुकड़ा आवत तो हमका अच्छा लगे न बहुत सारी बहन तो का ही करे जो किसनी पर किसी लेज तो छोटा छोटा लच्छा बनी जाए न उना लच्छा न खा शक्कर मिलाई ना।

0: खाओ तो वो भी अच्छो लगे, पर स्वाद बढ़े ना अपन अपना बच्चा न खा सब चीज़ न खवाड़ी सकान जी, उनका स्वाद का लेना का साथ साथ उनका स्वास्थ्य का लेना भी अच्छो छे ना, इना गर्मी का मौसम है उनका ठंडक न ताजगी भी देगा। तो थोड़ा सो थोड़ी सी मेहनत बस इतनी सी करनी पड़ेगा कि इलायची को कूटनू पड़ेगा, बाकी तो सब काटनू पीटनू बड़ा आसान छे। वो कूटी ना नाखी देव बारीक पाउडर हो जाएगा, वो उनका मुंडा मनी आवेगा, बस स्वाद बढ़नू चाहिए। तो खरबूजा का रस भी हमारी बहन ने इना समय बजना ना अपना घर का परिवार का सदस्य ने का दे सकज। देखो खाना की बात ना तो खूब अच्छी भी लगज, मन करज कि अरु एका बाद कई दूसरी विधि भी अपन देखी लेवाना, उखा भी करीना ना कोशिश करा। पर खेतीबाड़ी की बात भी जरूरी छे, सोयाबीन की बोनी को समय आई रोज ओकी काई काई पद्धति ने हुई सकज, विभिन्न पद्धति ने का बारा में अपन जानाज इनी वार्ता में। जानकारी अपूर्ण नख दैराज राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजपाल मीना।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजपाल मीना, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूं, और आज हम सोयाबीन बोने की कुशल पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि सोयाबीन या किसी भी अन्य फसल की अच्छी उपज लेने के लिए फसल की समय पर बिजाई करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोयाबीन खरीफ मौसम की वर्षा आधारित फसल है, इसलिए इसकी बिजाई भी मानसून के आगमन पर निर्भर करती है। मानसून की वर्षा जब करीब 100 मिलीलीटर के आसपास हो जाए तभी सोयाबीन की बुआई का उचित समय होता है। मध्य भारत में 25 जून से पहले अगर सोयाबीन की बिजाई कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होती है और हम अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अगर 25 जून के बाद में बिजाई करते हैं तो एक ऐसा अनुमान है कि करीब 35-36 किलोग्राम उपज प्रति दिन के हिसाब से कम होती रहती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर मानसून आ जाए तो इसकी बिजाई 25 जून से पहले हम कर लें। यदि अगर मानसून 25 जून तक नहीं आता है और इस कारणवश हमें बिजाई 25 जून के बाद करनी पड़े तो हमें बीज की मात्रा 25% तक बढ़ा देनी चाहिए। अब बात आती है कि सोयाबीन की क्रॉप ज्यामिति यानी कि क्रॉप ज्योमेट्री क्या रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, नॉर्मल परिस्थितियों में यानी कि मानसून अगर समय से आ गया तो सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि किसी कारणवश हम समय से बुआई नहीं कर पाते हैं और 25 जून के बाद में बुआई करते हैं तो फिर लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच से कम करके 12 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर पे करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए। यदि किसी वजह से बीज की मात्रा कम उपलब्ध है तो हम लाइन से लाइन की दूरी तो वही रखते हैं लेकिन बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर कर देते हैं तो इससे 25-30% बीज की बचत कर सकते हैं और उपज भी हमें लगभग लगभग उतनी ही मिलती है। इससे बीज बचत के साथ साथ में कुछ धन की भी बचत हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि बीज की गहराई क्या रखनी चाहिए। तो सोयाबीन की फसल की अच्छे अंकुरण प्राप्त करने के लिए करीब 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज की बिजाई करनी चाहिए। अब बात आती है कि किस पद्धति से सोयाबीन की बिजाई की जाए ताकि हमें अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये है कि सोयाबीन की बुआई सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल मशीन से करते हैं। इस मशीन में दो बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में बीज डाला जाता है, दूसरे बॉक्स में फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक डाले जाते हैं और दोनों एक साथ खेत में अच्छी तरह से प्लेस कर दिए जाते हैं और उनका अच्छा अंकुरण हमें मिलता है। अब क्योंकि सोयाबीन जो फसल है वो खरीफ की वर्षा आधारित फसल है, इसकी उपज मानसून कैसा रहता है उस पर निर्भर करती है, इसलिए मानसून की अधिक वर्षा या मानसून की कम वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए बिजाई की ऐसी पद्धति का उपयोग करना चाहिए जो वर्षा की अधिकता या वर्षा की कमी दोनों ही परिस्थितियों में फसल की मदद करे। सोयाबीन की बुआई की एक ऐसी कुशल पद्धति है जिसका नाम है ब्रॉड बेड एंड फुर्रो पद्धति, यानी कि उभरी हुई चौड़ी क्यारी एवं कूड पद्धति। इसमें उभरी हुई चौड़ी क्यारी के दोनों तरफ दो कूड बन जाते हैं जो हमारी फसल की दोनों ही परिस्थितियों में यानी कि मानसून की अधिकता या मानसून की कमी की परिस्थितियों में फसल की मदद करते हैं। जब मानसून की बारिश अधिक होती है तो इन कूड़ों से अतिरिक्त पानी निकलकर खेत से बाहर निकल जाता है और यदि कम वर्षा होती है तो ये पानी इन कूड़ों में संरक्षित रहता है जिससे हमारी फसल लंबे समय तक उपयोग करती है और एक अच्छी उपज देती है। किसान भाइयों, वर्षा के पानी को संरक्षित भी करती है ये पद्धति और अधिक वर्षा की स्थिति से फसल को बचाती भी है। ये BBF ब्रॉड बेड एंड फुरो प्रणाली सामान्य बुआई की अपेक्षा करीब 20-25% अधिक उपज प्रदान करती है, इसलिए किसान भाइयों आप इस पद्धति से बुआई करें और अच्छी उपज प्राप्त करें। इसके साथ किसान भाइयों मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: अभी अपन सुनी रहा था ये वार्ता सोयाबीन में बोने की विभिन्न पद्धति, जानकारी दे रहा था राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजपाल मीना। भाई बहनों, थोड़ी गर्मी तेज छे, एक अलेना अपनो ध्यान राखनो बहुत आवश्यक छे। कोशिश कर जो कि दोपहर का 12 बजे का बाद थोड़े सो 2-4 घंटा अपन घर में रहवा, यदि कोई काम हो तो सवेरे संध्या का निपटे लेवा, न जानू बहुत आवश्यक हो तो खूब सारो पानी पीना ना घर से निकला, माथा का बांधी ना निकला, न सिर का ढकना का साथ साथ एक कांदो भी अपना साथ में धरी लेवा जी की अपन का लू से बचाव हो, क्योंकि घाम में बहुत ज़्यादा तेजी छे, एक साथ आर्द्रता का कारण भी चिपचिप भी हुई रही, तो माथा पर कपड़ो बांधनो भी बहुत आवश्यक छे। न आम देखो ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम की बखत पूरी हुई रही, तो काल का कार्यक्रम का बारे में बात कर लेवा, काल सवेरे खेती की बात न कार्यक्रम में सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण का बारे में जानकारी लेवांगा, संध्या का खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा जगह में आज की बात में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का बारे में जानकारी लेवांगा, लोगी सुनांगा न सुनांगा भेंटवार्ता बकरी न की देखभाल का बारे में, तो काल बठाना सुनांगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम समापन करना की अनुराधा का देव आज्ञा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारिए अर्चना वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। शाम, चांदनी रात, प्यार का एहसास और हमारा कार्यक्रम। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, आप ही समझ जाएंगे मेरे इस गीत से

चाँद पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कुछ शायरों और नगमा निगारों ने चाँद को इस अंदाज में पेश किया कि उसमें महबूबा और मामा दोनों नज़र आते हैं। प्यार में प्रेसी को चाँद का खिताब देकर कई कविताओं में बताया गया है। चाँद की सुंदरता को अपनी प्रियतमा से भी आंका गया है। वहीं एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों की सुंदरता और मासूमियत को चाँद से आंकती है, कहीं चांद को मामा बनाकर उसे सुलाती है।

श्रोताओं, एक सूचना है। हेलो डॉक्टर संबंधी ये सूचना है। इस गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है रक्तदान, महादान, फायदे और भ्रांतियाँ। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। गुरुवार 11 जून 2026 को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना न भूले। गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। और अब रुख करते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। तुम्हारी खूबसूरती को चांद भी सलाम करे, इतनी प्यारी हो तुम कि जमाना भी कायम करे। तुम हंस दो तो रात भी चांदनी बन जाए, तुम्हें देख कर तो चांद भी शर्मा जाए। चांद जैसी नूरी हो तुम, दिल की धड़कन पूरी हो तुम। चांद की तरह तुम भी नाजुक और हसीन हो, मेरी हर धड़कन की सबसे खूबसूरत तमीज़ हो तुम। रात का चांद भी फीका लगे जब तुम्हारा चेहरा सामने आए। चांद को देखने से बेहतर है तुम्हें देखना, क्योंकि तुमने ही तो मेरी दुनिया बसती है।

चांद तुम जैसा होता है, थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा रूठा। चांद को रात को चांद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी भी यादें साफ दिखाई देती है। चांद की ठंडी रोशनी दिल को भी सुकून दे जाती है। कभी कभी चांद देखकर लगता है कि खामोशी भी कितनी हसीन होती है। चांद और मोहब्बत दोनों ही खूबसूरत होते हैं, बस देखने वाले का दिल चाहिए। चांद रात का नहीं, आशिकों के दिल का भी साथी होता है।

चांद को देखकर बस तुम ही याद आते हो, रात हो चांद हो और तुम, बस यही काफ़ी है। चांद भी कभी कभी तुमसे कम खूबसूरत लगता है, जितना चांद हसीन है उतनी ही तुम प्यारी हो। चांद को देखकर बस एक ही नाम आता है, तुम्हारा। रात की ठंडी हवा और चांदनी दिल को तुम्हारी याद दिला जाती है।

तेरे इशारों पर मैं नाचूं, क्या जादू ये तुम्हारा है। जब से तुमको देखा दिल ये बेकाबू हमारा है। जुल्फे तेरी बादल जैसी, आँख में तेरे समंदर हैं, चेहरा तेरा चांद का टुकड़ा, सारे जहाँ से प्यारा है।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन न था वफा पे, तभी चांद पर सितारों का पहरा है।

ये दिल न जाने क्यों क्या कर बैठा है, मुझसे बिना पूछे ही फैसला कर बैठा है। इस ज़मीन पर टूटा सितारा भी नहीं गिरता, और ये पागल चांद से मोहब्बत कर बैठा है।

ये दिल न जाने क्या कर बैठा। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की।

अब इजाजत दें अर्चना वर्मा को, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत

0: करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सतर्कता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Viksit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है. और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest serving elected Prime Minister Narendra Modi.
5: It is a historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind.
3: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India

लीजिए, आप सुनिए फिल्म काला पानी का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत SD बर्मन का है।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र गीत, और लीजिए अब सुनिए फिल्म श्री 420 का ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। इस गीत को बोल दिए हैं शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

ये गीत लिया है हमने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इसी गीत के साथ चित्र गीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और आईएनएस विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक

0: कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा, और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि

0: हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी उसने। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है। यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है, आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इम्पोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए। ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षा

0: भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भारत, ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है रूपक, हे अवंतिके हे अवंतिके। प्रस्तुति डॉक्टर हरीश प्रधान की, प्रतिभागी कलाकार मनीषा जैन, सुधा शर्मा, संतोष जोशी, संतोष अग्निहोत्री।
6: आकाशवाणी इंदौर है। आदिकाल से संस्कृतियों की धारा जहां बही है, भोज भर्तरी कालिदास ने कविताएं जहां कही हैं। गुण सलीला शिप्रा के किनारे बसी है पावन अवंतिका, यानी आज की उज्जैनी नगरी। उज्जैन की महिमा पर आधारित रूपक प्रस्तुत है हे अवंतिके हे अवंतिके। लेखक हैं डॉक्टर हरीश प्रधान, प्रस्तुति रविंद्र राली की।

0: क्षिप्रा के तट प्रतिकल्पा है मोक्षदाय उज्जयिनी, क्षिप्रा के तट प्रतिकल्पा है मोक्षदाय उज्जयिनी, मोक्षदाय उज्जयिनी।
1: हे अवंतिके, अवंतिके, हे अवंतिके,
2: कौन कौन ये मुझे पुकारता? कैसी तरल संवेदना खुली है इस पुकार में, रहती है जैसे अपनेपन की भावना सदा मालवी मनोहार में।
1: हे अवंतिके, अवंतिके, अप्रिय अवंतिके,
2: अरे मैं भी कैसी बावली, दूर से पहचान ही नहीं पाई, ये तो कलकल स्वर है मेरी प्रिय सखी क्षिप्रा का।
1: मैं ही तो हूँ।
2: तुम ही तो हो। कैसी हो सखी क्षिप्रे, तुम बहुत दिनों में मिले आज, पर दिख रही क्यों तुम कुछ उदास उदास?
1: बताऊं क्या मैं अपना हाल, रहती हूँ क्या उदास उदास? तुमसे मिलकर कितने दिनों में लौटा है आज मन का उल्लास, वरना वरना मैं तो मन ही मन रीत गई, तुमसे बतियाए बिन हाय ना जाने कितनी सदियां बीत गईं।
2: सखी ऐसा क्यों कहती हो, खुशियां तो तुम लुटाती जो मालव अंचल में बहती हो, कभी धीमी कभी क्षिप्र कल कल करती, आदिकाल से निर्बंध और स्वच्छंद।
1: यही तो है मन का अवसाद, मेरा बहाव नहीं रहा अब निर्बाध, तरलता सब सूख चली तब रीता मन लेकर क्या आती पास तुम्हारे, प्यार की तो बातें भी करती कैसे, सूखे हो जब दोनों किनारे।
2: सच कैसे सूख रही तुम
1: सखी, ये क्यों पूछ रही तुम?

0: शिप्री, है ये तो वही आवाज बहुत दिनों में सुन पड़े आज।
1: हाँ हाँ वंती के, सुनो तुम्हारी महिमा अपरंपार। आया था जोगी, नाम उसका कबीर, कह गया जो डग डग रोटी पग पग नीर।
0: क्या कहती हो क्षिप्री, ये तो महिमा तुम्हारी है, सींचती रही सदा मुझे वो अमृत धार तुम्हारी है।
1: सखी ऐसा क्यों कहती हो, भोली बन क्यों रहती हो, अमृतमयी तुम हो ममतामयी, अपना स्नेह आंचल पसारे, सबको अपने अंक में समाया, जो भी आया द्वार तुम्हारे। कालातीत हो तुम अनादि अमरावती, काल के अधिष्ठाता महाकाल की नगरी।
0: मैं तो सेविका हूँ महाकाल की, अब भी है याद वन विकराल की, तुम्हें भी तो होगी याद, जाने कब की है बात।
1: हाँ याद आ रहा वो सब आज तुम्हारे साथ, पुरानी यादें दोहराने का अवसर मिला है सदियों बाद। वो विकराल वन महानिर्जन कहलाता था महाकाल वन, और भोलेनाथ यहीं आकर करने लगे थे तप आराधन। तब शिव से मिलने आए यहाँ सब देवता, हुआ जंगल में मंगल, ब्रह्मा ने स्वयं कुशों से किया आच्छादित, अंजुरी में भर मेरा ही जल, इसीलिए कुशस्थली कहलाई तुम। और हाँ कैसे अमरावती कहलाई तुम याद है?
0: क्या
1: मरीचि नंदन कश्यप ने कैसा घोर तप किया था, और यहाँ

0: अमर उसकी संतति होगी, ये वर प्राप्त किया था। दिव्य और अलौकिक सब यहाँ आ बसे, सब देवों का सदावास। अमर हुई ये धरती, हुआ अमर तुम्हारा अमरावती नाम।
1: क्षिप्री, मुझसे भी पहले कि तुम अमृता की साक्षी, बहना ही अमरता है, तुम में अमरता ही बहती। तुम्हें तो सब कुछ वैसा ही याद है, एक तुम्ही हो जिससे छुपी नहीं मेरी कोई बात है।
0: क्या कहती हो अमरावती, तुम्हें छुपने को है ही कौन सी बात। कवियों ने गाई और इतिहास ने दोहराई ऐसी ही हर याद।
1: यादों की तो लंबी बारात है, ये भी याद नहीं कितनी सदियों का ये इतिहास है।
0: इतिहास खुद यहाँ ठहर गया कितनी ही बार, बने इतिहास और मिटे कितनी ही बार। पर हर कल्प में रूप नया तुमने संवारा, इसीलिए सखी प्रतिकल्पा हुआ नाम तुम्हारा।
1: क्षिप्री, मैं बदली, नाम बदली, राजा और सामंत बदल गए, तुम नहीं बदली। सखी, चांद तारे युग संवत बदलते गए। हाँ, एक संवत अपने पुत्र ने भी चलाया, विक्रम का, विक्रम संवत वो कहलाया।
0: अरे हाँ, जब वीर विक्रम ने था शकों को मार भगाया। आह, छाती ठंडी हो गई, बुझ गई जैसे कलेजे की प्यास। सदियों बाद सखी जो तुमने विक्रम का नाम दिलाया याद, वे भी क्या दिन थे, कैसा था गौरव तुम्हारा। विजय विक्रम के दिन कैसा था वैभव तुम्हारा। और याद है सखी?
1: कौन?
0: वो कवि।
1: अरे हाँ, पुत्र कालिदास, कर सकते हो कैसे विस्मरण, उसने भी तो सखी यश तुम्हारा गाया अमरन।
2: प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान।
3: देश अवंती मालव रसवंती, कह कहानी बूढ़े तानी, उदयन कथा पुरानी है वही रजधानी। उज्जयिनी दुनिया में जानी पहचानी, सबसे बढ़ चढ़ कर यह नगरी विशाला, लक्ष्मी स्वयं पहनाए जिसे शोभा की माला। लोग कहते हैं यही स्वर्ग गए थे पुरखे कभी, स्वर्ग के सब सुख भोग चखे, खत्म हुए पुण्य जो संचित रखे, तब शेष बचे पुण्यों के बदले, ले आए स्वर्ग का एक कोना धरा पर, है उज्जैनी नगरी मनहर।
1: शिप्री, तुम्हें तो स्मरण है भावमयी कविता पुत्र कालिदास की।
0: क्यों नहीं अवंती की, कहाँ रह गई वे कविताएं कालिदास की, वे तो बनी कीर्ति कथा जीवन के प्रवाह की विश्वास की।
1: क्षिप्री, मुझे भी याद है अब तक मेघदूत का वो छंद, वो तुम्हारी लहरें, सारसों का स्वर और कमल की गंध।

0: सुनोगे मेघ सारसों का वो दीर्घ स्वर मधु मनोहर, क्षिप्रा की लहरों पर ले जाता पवन जिसे सर खिलते कमल, जब होती भोर बस जाता सौरभ सौर, क्षिप्रा जल संग यह पवन भीना और कसैला फिर भी मीठा पन, रसिया चाटुकार क्षिप्रा का यह पवन जैसे चतुर सजन, जाने है जो सहज ही ललनाओं को भरमाना, थक जाए सुख से तन तब उन्हें सहलाना, अनुकूल प्रवाह जिसमें सुध बुध भूल जाए, थकन मिटे सब रात की स्फूर्ति नई पाए।
1: और क्या पुत्र सुमन को भूल गई तुम जिसने तुम्हारा आह्वान किया, कालिदास की शेष कथा का है जिसने गान किया।
2: मैं शिप्रा सा ही तरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। शिप्रा का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है कि पौराणिक प्रसंग से भरी हुई है, इसके बिना महाकाल या अवंत का गौरव हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। यद्यपि ये सदा निरानी है, जैसे गंगा है जमुना है बर्फ पर जलती है तो बारह महीने रहती हैं, पर अभी तक तो हमेशा प्रवाहित रही, तो शिप्रा का स्वरूप तो रहा नहीं, पर मेरे मानस में जो कालिदास की परंपरा का स्वरूप है ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष बना। और जहाँ पर सवेरे सुरतिक ब्रांड आकर नहाती हैं सुंदर स्त्रियाँ, तो शिप्रा इतना सुंदर कोमल उतना शायद किसी नदी हो, यत्र जैसे प्रेतम चाकू से कर रहा प्रेसी मान जाओ मान जाओ रोटो नहीं रोटो नहीं, हवा ऐसा करती है, इतनी कोमलता उसमें। मेरे सामने सराचित्र कालिदास की जो एक उत्तराधिकार में प्राप्त होता है पूरा सारे कवियों को भारतवर्ष को,
1: कैसे भूल सकती हूँ सखी उसको, पर उसने तुम्हारा भी तो गुणगान किया।
2: दिव्य का स्वर का कांतिमत खंड जो धरती पर गया, चारों तरफ बगीचे लहलहाते हुए, और एक चीज ऐसी जो कहीं नहीं बंबई में कलकत्ते में कहीं एक फरलांग तक मालियों की मालाएं तनी हुई मालूम हो रहा लगातार, ये तो सब उदाहरण देते हैं। तुम वहां जाना वहां तो रास्ता टेढ़ा पड़ेगा, कालिदास उस टाइम पर भी सीधा रास्ता नहीं था, तो कर हो गया नहीं तो भोपाल में गाड़ी बदलो या नागदाम बदलो, सीधा नहीं था कहीं के लिए न बम्बई न दिल्ली न कलकत्ता, वो तो सब उदाहरण देते हैं। आपको वहाँ जाने में मैं से कह रहे हैं वक्र तो चक्कर तो पड़ जाएगा, वक्रपंथ हो जाएगा, कौन जो उत्तर की ओर जा रहे हैं हमारे अलका को भी जा रहे हो प्रस्थितस्य उत्तराश उत्तराशाम प्रस्थितस्य, ऐसा करना कि सौधोत संगत प्रणय विमुखो, जो जैन के सौध हैं प्रासाद हैं उनके प्रणय से विमुख नहीं करना, तो शंका देते भी हैं। और वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं उनके जो अपांग अपान कहते हैं कटाक्ष को, ऐसे मालूम पड़ते जैसे बिजली की रस्सियाँ उस तरह चमक रही हैं, उनके लोल अपांगों में तो नहीं रमे तो अभाग्य हो, इसको सब उद्धरण देते हैं। पर अवंतिका को जो फूलों वाला सौंदर्य, आज भी जहाँ पर जाइए बाहर तो एकड़ की एकड़ फूलों की खेती होती है, चाहे नवरंगा लगा हो चाहे गुलाब लगे हो चाहे गेंदा लगा हो, आप जाके देखिए। और सवेरे मालने जब फूल तोड़ने जाती हैं तो खेत की हुई मटकी में दिया रख के गाती हुई जाती है, तो जब तुम जाना मैं कब जाएगा वैसा अषाढ़ के पहले, जब खूब तप रहा तो गंडक सुवेदा पर नयन जो कपोल में पसीना उनके आ गया है उसको पोंछ देना, क्या रुजा क्लांत करणोत्पला नाम जो कमल के फूल की पंखुड़ियों के मुंह में कर्णफूल पहन रखे हैं उसकी पंखुड़ियां गालों में से पक गई होंगी, उनको तुम पूछ के छाया दाना छाया करके क्षण परिचय का उनसे क्षण परिचय प्राप्त कर लेना, उसके काट लेना किससे मालिनी का पुष्प लाभी मुखानाम, उन फूल चलने वाले मुखड़ों से। कि मैंने पढ़ा कि कालिदास ने अपना मेघदूत एक मालिन को सुनाया था, तो मैं लील अपांगों के सपने सेता हूँ, मैं शिप्रा का जल नैनों में लेता हूँ। कभी कालिदास जिनके गजरों पर रीझे, मालीपुर की मालिनों पर डाले। अब अवंतिका का वैभव एक और बढ़ती गई, एक और ये माया मचिंद इतना वो जो उनका वैभव है जिसका मैंने वर्णन किया है कि यहाँ ये हैं, मैं कुमुदवती से राम राम कहता हूँ, काली बहके बहके सलाम करता हूँ, जिसकी रज से उत्कृत गीता का गायक उसका भी पंडुर को प्रणाम करता हूँ, मेरा सलाम लो पीर मच्छंदर बाबा, मेरा सलाम लो पीर मच्छंदर बाबा।

0: हर्षित देव पद निर्मित होता है काबा, जहां सीधा करो वही काबा है। हर्षित देव पद निर्मित होता है काबा, ए अलमस्ती की दुआ तुम्हें से पाई, दुनिया में डर कर अलग जगाओ बाबा। अब भरतिया भी आए गोविंद अविंद का है, बताए तो मालूम सात बार गति बदल थे, सात बार फिर गृहस्थ हुई। जब बैठेंगे दुनिया में क्या रखा है माया में, जब सन्यास हो जाए अरे बिना औरत के जिंदगी क्या, फिर गृहस्थ माया सात बार, कहीं ऐसा है ही नहीं। और क्या श्लोक सर जिससे गति चाहिए, याम चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता सातन्यम क्षत जनम सजनोपचाम्याम असमत कृते च परतिष्ठत काचिदन्या दुपतं चतं च मदनं च इमां च मानं। आंखों में रूप कृष्ण का अटका, मेरे भी सर में अनुरागी सब लटका। भरतहर तुम्हारी परंपरा का मैं भी, घर से बन बन से घर बरसों तक भटका। पूरा वंशकर जो हमारे सामने प्रवेश आया, एक मिटिंग संकेत बता देता हूँ। यहाँ मिटिंग के घर सारे में लोग अलसार किया करते, बेहतर निकुंज संकेत बता देता हूँ। कुछ काम पड़े आ पड़े शायद परदेशी से, चलते चलते मैं पता बता दे पता नहीं कर। जब मधुर की पागल बयार छाएगी, सोनी रजनी दुल्हन की शर्माएगी, तब सुबह सेब के सुनने को खेलना, हमने तुमको मेरी सुगंध आएगी। इतना भरा कण कण में मिझलता है कविता साहित्य रस आनंद चार होता है। तो आनंद कैसा, जो मंगलाशा का आनंद होता है, नीचे नहीं जाता ऊंचा उठाता है। जो महादा जी ने अचल गंगा में उठे था क्या चुप कर था कि नहीं मंगल है, जितना भी राजा छोड़ा
1: सब याद है। आया था पढ़ने यहाँ संग सखा सुदामा और

Sunday night preferred. So he gave it to me for a while. वह काली की अहर शरण काल भैरव की पावन शरण मंगल वर्षा का मंगल नाथ हर सिद्धि में हर सिद्धि का है साथ हर उस पर सोने के सुहागे का कान्हा का फिर आला मेरी प्रिय पुत्री वृंदा को पता

की बातें हैं, समय के कितने विप्लव, कितने इतिहास दिखाते हैं। देवयुग बीता, आई और गए, मौर्य, शल, मालव और शक, सातवाहन, मालव, औलंकर, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, परमार, सबने किया क्षिप्रे, तुम्हारे ही दल में अवगाहन। सुल्तानों का भी दौर देखा, अकबर जहांगीर थी जहां आया था, योगी जगरूप की साधना को जिसने माथ नमाया था, और अभी कल ही की तो बात है, रणबांकुर मराठे मेरे आंगन में खेले, बना गोपाल मंदिर रंग खेले। ओ सखी अवंती के, आज तुम्हारे संग कितनी बातें दोहराऊं, अपने से ही होती अपनी बातें, जानी है भावों की गहराई। सब चले अब जल्दी यहाँ से, वो देखो मेरे पुत्रों की गहराई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन जिन को नाच गा रहे सब भाई। आओ आओ छिप कर देखें कि जने नाच कैसा उत्सव मना रहे हैं ये पुत्र आए।

या तो तुम हो ही अवंती हो, तुम्हारे आंचल का स्नेह उत्सव है, महिमा तुम्हारी ही जनरव गाता, आओ सुन उत्सव के सुरों में।

0: महाकाल महाराज की जय। बोल महाकाल महाराज की जय।
1: बोल शुक्ला मैया की
0: जय।
1: बोल शुक्ला मैया की।

हे अवंतिके। डॉक्टर हरीश प्रधान का लिखा रूपक अभी आपने सुना। वाचक स्वर सुधा शर्मा, मनीषा जैन, संतोष जोशी, गायक स्वर संतोष अग्निहोत्री और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र वाले। हम आभारी हैं डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर श्री निवास

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक हे अवंतिके हे अवंतिके। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, रात्रि के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज का गाया राग मारवा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गाया राग मारवा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्पण।

0: समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President